मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सुप्रभात आगरा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी

0: तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भारत माता सबकी माता, चाहे जो हो धर्म विशेष, माँ की रक्षा माँ की पूजा, हम सबका है कर्म विशेष।

जप ले रे मन नाम राम का, राम नाम सुखदाता है, राम नाम में रमने वाला भव सागर तर जाता है।

दुख भंजन है नाम तुम्हारा, पवन पुत्र हनुमान, संकट मोचन कार्य तुम्हारा, कृपा करो हनुमान।

आइए आप वंदना करते हैं हम सब के प्रिय भगवान श्री कृष्ण की। वही श्री कृष्ण, वही गोपाल, जिनके मुख पर सूर्य सा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता है, जिनका हृदय पर्वतराज हिमालय जैसा विशाल है, ऐसे जगत पालक हमारे मोहन श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत है ये भक्ति गीत।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने अश्विनी भिड़े, हरिओम शरण, प्रीति सागर और समवेद स्वरों में भक्ति गीत सुने। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:25 हुए हैं। चिंतन के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए प्रतिज्ञा पर विचार।
1: ऋषिराज नगर के बाहर उद्यान में पधारे थे। सारा जनसमूह उन्हें देखने उमड़ पड़ा। उसी समूह में एक था यमपाल, राजकीय बधशाला का बधिक, जो नित्य ही सिर को धर से अलग करके मनुष्यों को यमराज के यहाँ भेजा करता था। ऋषिराज उच्च शिला पर विराजमान थे। अहिंसा के उपदेश में वे कह रहे थे, मारने और मरने वाले का अंतर तो देखो, जहाँ पहले को तो क्षण भर का आनंद मिलता है, वहीं दूसरा हमेशा के लिए प्राणों से वियुक्त हो जाता है। उनके प्रत्येक शब्द में जादू सा प्रभाव था। पाषाण को भी पिघलाने वाले उपदेशों को सुन यमपाल का अंतर्मन रो उठा। अंत में किसी ने जिज्ञासा की, प्रभु जिससे हिंसा हो चुकी हो वो क्या करे? प्रायश्चित, ऋषि धीरता से बोले, क्योंकि वही मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। तभी व्यथित यमपाल ने पूछा, और प्रभु जिसकी आजीविका का साधन ही हिंसा हो तो? उसके भोलेपन पर ऋषि मुस्कुराकर बोले, वत्स, हिंसा बुरी है। जब ये बात हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है तो एक न एक दिन हिंसा स्वयं ही छूट जाती है। पर मैं बधिक हूं स्वामी, क्या करूं? यमपाल की वाणी में करुणा थी। ऋषि गंभीर वाणी में बोले, तुम अहिंसा के महत्व को समझो।

0: माह या पक्ष में एक ही दिन सही अहिंसक बनने का अभ्यास करो और समयानुसार इसमें वृद्धि करते जाओ। संतुष्ट यमपाल ने प्रतिज्ञा ली, प्रत्येक चतुर्दशी को मैं अब प्राणीवध नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद चतुर्दशी का दिन आया, यमपाल के अहिंसक बनने का दिन। तभी राजकुमार को प्राणदंड की बात सारे शहर में अग्नि की तरह फैल गई। कुछ लोगों का मत था, राजा भी कैसा दुराग्रही है, साधारण से अपराध पर प्राणदंड। पर राजा का अभिमत था, मेरा पुत्र अनुशासन भंग करे, प्रजा के समक्ष अनपेक्षित आदर्श प्रस्तुत करे, ये मैं नहीं सह सकता। सारी प्रजा इससे दुखी थी, प्रसन्न थी तो सिर्फ यमपाल की स्त्री चांडाली, क्योंकि आज प्रजा के सामने राजकुमार का वध होगा तो नियमानुसार उसके बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण उसकी झोली में आ गिरेंगे। ओह, कैसे संभाल पाऊंगी मैं उनको। और वो उस क्षण का इंतजार करने लगी जिस क्षण राजकुमार का मस्तक धूलि में लूटेगा। तभी उसकी कल्पना को भंग करता हुआ यमपाल बोला, देख आज चतुर्दशी है, मेरी प्रतिज्ञा का दिन, कोई बुलाने आए तो मना कर देना। अपने स्वप्न को बिखरता देख चांडाली क्रोधित हो उठी, बोली, चांडाल होकर भी पंडितों की तरह प्रतिज्ञा करते हो तुम। अरे तुम न सही, कोई और ही आज बधिक बनेगा और तब आभूषण भी तो उसी के होंगे। तभी राजाज्ञा लेकर आए राजपुरुष बलपूर्वक उसे बद स्थान तक ले गए। यमपाल दृढ़ता से राजा के सामने जाकर बोला, महाराज क्षमा करें, मैंने आज के दिन बध न करने की प्रतिज्ञा ली है। ओह, एक बधिक ने अहिंसा व्रत लिया है, राजा कठोरता से बोला, जाओ अपना काम करो। एक एक पल गुजरता गया और फिर फांसी का वो क्षण भी गुजर गया। यमपाल के हाथ फंदे की डोर न खींच सके। राजकीय नियमानुसार निश्चित समय गुजर जाने पर उसे ही ईश्वरीय इच्छामान पुनः बध नहीं किया जाता। राजकुमार पश्चाताप से भर उठा, लेकिन राजा क्रोध से गरज उठा, रे दुष्ट चांडाल, तूने राजाज्ञा न मान मेरी शक्ति को तौलने का दुस्साहस किया है, ले जाओ इसे और चढ़ा दो सूली पर। तभी निस्तब्धता तोड़ती अमृत बरसाती वाणी गूंज उठी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। शब्द उसी ऋषिराज के थे। वे आगे बोले, राजन ये कैसा न्याय है, यमपाल उल्लंघन नहीं अपने प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा कर रहा है। आप तो धर्म और प्रजा के रक्षक हैं, सभी को एक बार सुधार का मौका दो, प्रायश्चित से बढ़कर और कोई ईश्वरीय दंड नहीं है। राजा के नेत्र ज्ञानोदय से चमक उठे, प्रजा ने हर्षद ध्वनि की, ईश्वरीय धर्म की जय हो।
1: चिंतन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रतिज्ञा पर विचार। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। सुबह के 6:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारी इस सभा में और अन्य सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर आप सुन सकते हैं रोजाना की तरह श्री रामचरित मानस गान। खेती की बातें कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 6:45 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता, दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दुग्ध निकालने के परिणाम।

7 बजकर 10 मिनट पर कार्यक्रम रहेगा स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज प्रसारित की जाएगी वार्ता, विषय रहेगा चर्म रोग और होम्योपैथी चिकित्सा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर हरेंद्र सिंह तोमर। 7 बजकर 31 मिनट पर आप सुन सकते हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि हम आपको सुनवाएंगे प्रातः 8 बजकर 45 मिनट पर और 9 बजकर 25 मिनट पर कार्यक्रम रहेगा गीत मंजूषा। 10 बजे आप सुन सकते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। पूर्वाहन 11 बजे कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा आज के कलाकार और समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा पूर्वाहन 11 बजकर 30 मिनट। 12 बजकर 30 मिनट पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रहेगा नए तराने। 1 बजकर 15 मिनट पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम घर संसार। इस कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी हरियाली से खुशहाली विषय पर, साथ ही सुनवाई जाएगी विभा अग्रवाल की वार्ता, विषय रहेगा समाज को बदलने में शिक्षकों की भूमिका। घर संसार कार्यक्रम के अन्य आकर्षण रहेंगे अप टू डेट, परवरिश, रिश्ते नाते, हमारा स्वास्थ्य और कुछ तुम कहो कुछ हम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं ए हरिहरन की गाई हुई गजलें। कार्यक्रम का समय रहेगा 1 बजकर 45 मिनट।

2:45 पर आप सुन सकते हैं आज भूले बिसरे गीत और 3 बजे सुनवाया जाएगा फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। संध्या 5:10 पर प्रसारित किया जाएगा भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। संध्या 5:30 पर आप सुन सकते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। 6 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक और मजदूर मंडल। कार्यक्रम का समय रहेगा 6:30। विविधा के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर कृष्णा गुप्ता की वार्ता, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनका रचना संसार। कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:10।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर, और भारत भारती कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं।

कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता। विषय है दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दुग्ध निकालने के परिणाम।
1: प्यारे किसान भाइयों, हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। दूध पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव है। दूध मनुष्य के लिए संपूर्ण भोजन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पशुओं के अयन में स्थित दुग्ध ग्रंथियों से दूध का स्राव लगातार होता रहता है तथा दुग्ध कूपों में दूध जमा होता रहता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से दुग्ध कूपों की मांसपेशियां संकुचित होती हैं तथा दूध थनों में उतर आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पसराना कहते हैं। जब बछड़ा दूध पीता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है तथा पशुओं में पसराने की क्रिया होती है। कुछ विपरीत परिस्थितियां आने पर पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण अयन में दूध भरा होने के बावजूद भी पशु पसराता नहीं है तथा पशुपालक दुधारू पशुओं में

सुई लगाकर दूध निकालते हैं। जिस दवा की सुई लगाई जाती है वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त में मिल जाता है तथा दुग्ध कूपों की मांसपेशियों को संकुचित करता है, जिसके कारण पशु दूध को उतारने हेतु मजबूर हो जाता है। दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने की स्थिति दुधारू पशु के बछड़े की मृत्यु होने पर बनती है। ऐसी स्थिति में पिट्यूटरी ग्रंथि के पिछले भाग से ऑक्सीटोसिन हार्मोन न निकलने के कारण पशुपालक सुई लगाकर दूध निकालने की प्रक्रिया अपनाते हैं। स्थान तथा दूध धोने वाले व्यक्ति के बदलने पर भी यह स्थिति आ जाती है। पशुओं में सुई लगाकर दूध लेने के कई घातक परिणाम हैं। सुई लगाकर दूध लेने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के साथ निकलता है। ऐसे दूध को पीने के घातक परिणाम सबसे अधिक कम उम्र तथा किशोर उम्र के लड़के तथा लड़कियों पर पड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से किशोर उम्र से पहले ही लड़कों के जल्दी दाढ़ी मूछ निकल आती है। किशोर उम्र से पूर्व ही लड़कियों में युवावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से बच्चों में शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। सुई लगाकर निकलने वाले दूध को पीने से महिलाओं का मासिक धर्म गड़बड़ा जाता है। दुधारू पशुओं से सुई लगाकर दूध लेने के घातक परिणाम दुधारू पशुओं पर भी पड़ते हैं। जिन पशुओं से सुई लगाकर दूध निकाला जाता है वे पशु गर्मी पर नहीं आते हैं। यदि ऐसे पशु गर्मी पर आ भी जाते हैं तो आसानी से गर्भधारण नहीं करते हैं। दुधारू पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने से पशुओं को सुई लगाकर दूध निकालने की आदत पड़ जाती है तथा बिना सुई लगाए ऐसे पशु दूध नहीं देते हैं। लंबे समय तक पशुओं के गर्भधारण न करने से पशुओं द्वारा दिए गए दूध की मात्रा काफी कम रहती है तथा पशु आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं रहता है। इन्हीं सब घातक परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दूध निकालने के इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मेडिकल स्टोर पर अनधिकृत रूप से रखे जाने अथवा बेचे जाने पर यह अपराध माना जाता है। दुधारू पशुओं को इंजेक्शन लगाकर दूध निकालने की पद्धति गांवों की अपेक्षा शहरों में ज्यादा प्रचलित है। शहरवासी ताजा दूध शहरों में रखे जाने वाले पशुओं से लेते हैं। शहरों में दुधारू पशुओं के तबेले पाए जाते हैं। दुधारू पशु पालने से ये लोग अच्छे नस्ल के दुधारू पशुओं को खरीद लेते हैं तथा बछड़े को दूध न पिलाकर पूरा दूध निकालते हैं। बछड़े को दूध न मिलने के कारण तथा बछड़े की सही देखरेख न होने के कारण कुछ ही दिनों में बछड़ा मर जाता है तथा पशु दूध देने में परेशान करता है। ऐसी स्थिति में शहरों में पशु रखने वाले ये लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध निकालते हैं। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाने से पशु दूध उतारने हेतु मजबूर हो जाता है तथा बिना किसी कठिनाई के पशु दूध निकालने देता है। शहर में पशुओं को पालने वाले व्यक्तियों के लिए पशु का जल्दी गर्भधारण करना आवश्यक भी नहीं होता है तथा पशु बहुत दिन तक दूध देता रहता है। दुधारू पशु के द्वारा कम दूध दिए जाने की स्थिति में शहर के पशुपालक पशुओं को बेच देते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए दूध के खरीदारों को यह मालूम कर लेना चाहिए कि जिस स्थान से वह दूध ले रहे हैं वहां ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो तो नहीं रहा है। यदि वहां पर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है तो उस स्थान से दूध नहीं लेना चाहिए। साथ ही शहर के पशुपालकों को यह प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे दुधारू पशुओं के बछड़ों का अच्छी तरह से पालन पोषण करें, उन्हें पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं जिससे बछड़ों की मृत्यु न हो। इसके साथ ही यदि किसी कारण दुधारू पशु का बछड़ा मर जाता है तो पशुपालक ऑक्सीटोसिन का प्रयोग न कर पशुओं के साथ नरम व्यवहार करें तथा पशु चिकित्सक से सलाह लें। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में दूध उतारने के लिए किया जाना इस हार्मोन का दुरुपयोग है। दुधारू पशुओं में बछड़े की मृत्यु, स्थान बदलने तथा दूध धोने वाले व्यक्ति के बदलने से यदि पशु दूध नहीं उतारे तो पशु के साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए। पशु को पौष्टिक आहार देना चाहिए। पशु के थनों को धीरे धीरे सहलाना चाहिए। यदि पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाना संभव हो तो पुराने दूध धोने वाले व्यक्ति को लाकर कुछ दिन नए व्यक्ति के साथ दूध निकलवाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। यदि इन सभी उपायों से पशु दूध न उतारे
तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।

0: तथा दूध निकालने वाले इंजेक्शन का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम खेती की बातें में डॉक्टर पीसी रावत की वार्ता, विषय था दुधारू पशुओं में सुई लगाकर दुग्ध निकालने के परिणाम। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, आइए अब सुनते हैं देशगान।

0: प्राचीनसभ्यतायाः संस्कृतेः आध्यात्मिकसम्बन्धानां च प्रगाढतां प्रतिबिम्बयन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तत्र इण्डोनेशिया छात्राणां समन्वयसमूहेन कृतं भरतनाट्यनृत्यमपि भृशं प्रशंसितम्। स्वस्य विश्रामभवने प्रवासी भारतीयैः सह मिलित्वा तेन रामायणकथाधारितं प्रसिद्धं वायाङ्गकुलित छायाखटपुतली प्रदर्शनं बौद्धिकभक्तिनृत्यञ्च अवलोक्य महान् हर्षः प्रकटितः। इण्डोनेशियादेशे भारतीयराजदूतस्य सन्दीपचक्रवर्तिनः अनुसारं प्रधानमन्त्रिणः अयं प्रवासः दक्षिणपूर्व एशियायाः अस्याः बृहत्तमायाः अर्थव्यवस्थायाः साकं भारतस्य रणनीतिकसम्बन्धान् उच्चतरशिखरं प्रापयिष्यति। ध्यानार्हं वर्तते यत् प्रधानमन्त्रिणः अस्य त्रिदेशीय इण्डो पैसिफिक प्रवासस्य एतत् प्रथमं चरणमस्ति। अतः परं सः अस्मिन्नेव सप्ताहान्ते ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशयोः अपि भ्रमणं विधास्यति। श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन सामान्यसचिवस्य चम्पतरायस्य न्याससदस्यस्य डॉ अनिलमिश्रस्य च त्यागपत्रे स्वीकृतम्। कथितेन राममन्दिरदानवञ्चनप्रकरणे तयोः नाम प्रकाशात् परम् उभौ त्यागपत्रं प्रदत्तवन्तौ। कृष्णमोहनः नवनियुक्तिपर्यन्तम् अन्तरिम सामान्यसचिवरूपेण नियुक्तः। तस्य परिवादे कथितदान अनियमिततायाः प्रकरणे FIR इत्यस्य पञ्जीकरणम् अभवत्, यस्मिन् अष्टजनाः निगडिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः बहरीन देशे तत्रत्येन नरेशेन हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यमुना साकं शिष्टाचारमेलनं विहितवान्। सहैव द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं प्रमुखचर्चाः अपि साधितवान्। विदेशमन्त्री कतरदेशस्य यात्रां परिसमाप्य स्वस्य उपसागरीय देशानां चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्यमहाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचण्डवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। आगामि दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपहिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टि भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनं झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे USA बेल्जियम वा देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाए, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री क्षमा करें कर इसको दोबारा सुन लें, इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा।

0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्र के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने यह बात कही। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमरीका के टेक्सास के डलास शहर में स्पेन के पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक और अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमरीका का सामना बेल्जियम से हो रहा है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by VC Pramod. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. The two leaders will also witness the exchange of Memorandum of Understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The day's engagements will conclude with a state banquet hosted by President Prabowo Subianto in honour of the Prime Minister. Later, Prime Minister Modi will have engagements at the Complex Parlemen Republic Indonesia, highlighting the importance of parliamentary cooperation between the two countries. He will also participate in a community event where he will interact with members of the Indian diaspora. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. India's ambassador to Indonesia, Sandeep Chakrabarty, said that Prime Minister's visit to Indonesia is set to mark a significant upgrade in India's strategic partnership with Southeast Asia's largest economy. He said major announcements expected across defense, maritime security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
3: We will be doing a lot of understandings and agreements on several

0: इसलिए इसका दर्द काफी गहरा तथा ऐसी जलन होती है कि कोई काट रहा हो। हर्पिस चार प्रकार का होता है। इनमें से हर्पिस जोस्टर में तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। एलर्जिक चर्म रोग कई वजह से होते हैं। कुछ एलर्जी खाने पीने वाली वस्तुओं की वजह से होती है तथा कुछ दवाओं के रिएक्शन से भी हो सकती है। कभी कभी सर्दी गर्मी की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, जैसे ज्वर पित्ती इत्यादि। ज्वर पित्ती में शरीर पर एक प्रकार के उभरे हुए चकत्ते निकलते हैं, उनमें काफी खुजली होती है और जलन भी होती है। खुजाने से चकत्तों में सूजन आ जाती है। जटिल प्रकार के चर्म रोगों में एक्जिमा या छाजन, दाद, सोरायसिस तथा कील मुहासे इत्यादि आते हैं। एक्जिमा अथवा छाजन शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं। पहले महीन दाने निकलते हैं, ये दाने खुश्क भी हो सकते हैं और कभी कभी चिपचिपा पानी भी खुजाने से निकलता है और कभी कभी दाने पक भी जाते हैं। दाद या रिंगवॉर्म के चकत्ते शरीर के किसी भी भाग में बन सकते हैं। ये चकत्ते ज्यादातर गोलाकार किनारी से फैलते हैं, किनारी उभरी हुई तथा बीच में प्लेन होता है। इसमें खुजली तथा जलन विशेष होती है। चर्म रोगों में सोरायसिस की बीमारी सबसे जिद्दी बीमारी मानी जाती है। यह ठीक होने में सबसे ज्यादा समय लेती है। इस बीमारी में त्वचा के ऊपर किसी प्रकार के छाले अथवा दाने नहीं बनते हैं। इस रोग में त्वचा सूखी, सफेद तथा फटी फटी सी हो जाती है एवं मछली की त्वचा की भांति रूसी तथा पपड़ी सी दिखाई देती है। इसमें एक तरह के चकत्ते पहले छोटे तथा फिर बड़े आकार के हो जाते हैं। सोरायसिस घुटने, कोहनी, हाथ पैरों के तलवे तथा सिर में अधिक होती है। कील मुहासे से अथवा पिंपल्स के दाने अधिकांश किशोरावस्था में ज्यादातर चेहरे पर निकलते हैं। इसकी वजह कुछ तो हार्मोनल होती है तथा कुछ तेज मसाले युक्त भोज्य पदार्थों के सेवन से तथा प्रदूषण के कारण बनते हैं। ये दाने कभी कभी पीठ तथा गर्दन पर भी निकलते हैं। ये दाने महीन, गांठदार या फिर पकने वाले भी हो सकते हैं। दबाने पर दानों में से एक प्रकार की सफेद कील सी निकलती है। दाने ठीक होने के बाद प्रायः काले दाग छोड़ जाते हैं तथा त्वचा रफ तथा खुरदरी हो जाती है। सभी प्रकार के चर्म रोगों में होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही कारगर है। त्वचा संबंधी किसी भी रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही चिकित्सक की सलाह से उचित लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाओं का चुनाव किया जाए तो यथोचित समय में ही रोग समूल नष्ट हो जाता है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में एक भ्रांति आम जनता में व्याप्त है कि इस इलाज से बीमारी पहले बढ़ जाती है, यह रोग को शुरू में उखाड़ देती है, जबकि यह सत्य नहीं है। कोई रोग, विशेषकर चर्म रोग, यदि किसी वजह से दबा हुआ है तो यह होम्योपैथिक दवाओं के प्रयोग से प्रकट अथवा क्लियर हो जाता है। और यह बात प्रमाणित है कि बिना बाहर निकले कोई भी चर्म रोग पूरी तरह से समूल नष्ट नहीं किया जा सकता है। चर्म रोगों के बारे में एक भ्रांति यह भी है कि चर्म रोग छूने से या संपर्क में आने से एक दूसरे को लग जाता है, इसलिए चर्म रोग वाले व्यक्ति से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। कुछ चर्म रोग जैसे खाज, खुजली इत्यादि जो कि शारीरिक संपर्क में आने से फैल सकती हैं, बाकी सभी चर्म रोग संपर्क में आने अथवा छूने से नहीं फैलते हैं। वैसे सावधानी के तौर पर त्वचा के रोगी के कपड़े, साबुन, तौलिया इत्यादि अलग ही रहने चाहिए। त्वचा के रोगी को शरीर की तथा कपड़ों की सफाई भली भांति रखनी चाहिए। खटाई, तेज मसाले तथा बादी की चीजों का परहेज रहना चाहिए।
1: अभी आप सुन रही थी वार्ता चर्म रोग और होम्योपैथी चिकित्सा। वार्ताकार थे डॉक्टर हरिंद्र सिंह तोमर। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने को है, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था ऐसी स्थिति में, और हम लोगों ने उसका

0: स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपताया जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
1: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
0: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
1: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है। मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी। 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
1: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
4: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होम गार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सव पूर्ण वातावरण में

0: एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
1: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहिब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
2: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम रेल मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये ट्रेन सिर्फ जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
4: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। प्रातः के 7:31 हुए हैं और ये समय रहता है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम आसपास में और मैं हूँ आपके साथ रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा, प्रेम भरा और मोहब्बत भरा नमस्कार। साथियों, ये जो जीवन होता है जिसे हम लोग बहुत नामों से जानते हैं, जिंदगी भी कहते हैं, लाइफ भी कहते हैं और भी न जाने कितने नाम हमने जीवन को दिए हुए हैं।

जीवन एक ऐसी अनमोल भेंट है जिसकी हर धड़कन हर सांस एक समय के धागे से बंधी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये समय जो दिखता नहीं पर हर पल बहता रहता है हमारे हाथों से रेत की तरह धीरे धीरे फिसलता जा रहा है। कुछ पल होते हैं जो सोने से भी कीमती होते हैं और कुछ ऐसे जो यूं ही धूल में मिल जाते हैं। समय ये ना किसी के लिए रुकता है और ना ही किसी की प्रतीक्षा करता है। ये एक ऐसी बहती धारा है जिसमें हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा देने के लिए चलते रहते हैं। आज हम इसी अनमोल पूंजी यानी समय के प्रबंधन पर बात करेंगे ताकि हमारी हर सुबह एक नई उमंग और स्फूर्ति से भरी हो। देखिए, हम सब लोग जो हैं वो दौलत, शोहरत या सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन जानते हैं हमारा सबसे बड़ा खजाना क्या है? वो है हमारा वक्त। जब वक्त चला जाता है तो उसे दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी पैसा वापस नहीं ला सकता। इसीलिए हमें इस वक्त को सम्मान देना सीखना होगा। इसे यूं ही फोन स्क्रॉल करने में या बेकार की बातों में बर्बाद करने से रोकना होगा। तो फिर अब सवाल यह है कि क्या किया जाए जिससे हम अपने सबसे बड़े खजाने को यानी हमारे वक्त को बचा सकें, इसको प्रबंधित कर सकें, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, या फिर कैसे बने अपने समय के मास्टर। तो देखिए, समय को साधने के तीन बेहद ही सरल मंत्र हैं। सबसे पहली बात है कि अपनी प्राथमिकताएं तय करें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कागज और पेन उठाइए और लिखिए कि आज आपको सबसे जरूरी काम कौन कौन से करने हैं। जो काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जो मुश्किल लगते हैं आपको, उन्हें सबसे पहले खत्म करें। इस तकनीक को कहते हैं ईट दैट फ्रॉग। जब आप अपना सबसे मुश्किल काम पहले कर लेते हैं तो दिन भर आप हल्का महसूस करते हैं और बाकी काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका मनोबल जो है वो भी बढ़ जाता है। दूसरी बात है ना कहना सीखें। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे काम उठा लेते हैं जिनके लिए हमारे पास समय नहीं होता। ये हमारी ऊर्जा को कम करता है और साथ ही हमारे जो जरूरी काम होते हैं उनसे भी हमारा ध्यान भटक जाता है। याद रखिए, आपका वक्त आपका है। अगर कोई काम आपकी प्राथमिकताओं को बिगाड़ रहा है तो प्यार से ना कहना सीखें। ये कोई स्वार्थ नहीं है बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति आपकी ईमानदारी है। किसी भी बड़े काम को देखकर घबराइए नहीं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है तो एक दिन में एक ही हिस्सा पूरा करने का लक्ष्य बनाइए और इस तरह आप धीरे धीरे करके पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। जब आप एक छोटा सा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं ना, तो आपको एक सफलता का एहसास होता है। आपका मन सफलता को महसूस करता है और यही एहसास होता है जो अगले छोटे लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हमें ऊर्जा और स्फूर्ति और एक नई उमंग देता है। तो सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें, ना कहना सीखें और लक्ष्यों को छोटा छोटा बनाएं। अपने टारगेट्स जो हैं उनको छोटा छोटा बनाएं। याद रखिए दोस्तों, समय प्रबंधन कोई किताबी ज्ञान नहीं है कि हमने कोई किताब पढ़ी और हमने टाइम को मैनेज करना सीख लिया। ये तो एक अनुशासन है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल गुजारे नहीं बल्कि उसे जिए। हर पल को इतना कीमती बनाएं कि जब हम पीछे मुड़कर देखें तो आपको खुशी हो कि आपने हर मिनट को, हर सेकंड को, हर पल को सार्थकता दी है, उसे बर्बाद नहीं किया है। तो अब और देर नहीं, उठिए और अपने समय की बागडोर अपने हाथों में लीजिए और एक शानदार और सफल जीवन की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि वक्त ही जीवन है। और इसी आशा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास, और मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। आइए अब चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश को देश में नवाचार और स्टार्टअप का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन को स्वीकृति दी गई है। नई नीति के तहत 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड और 400 करोड़ रुपए के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन स्थापित किया जाएगा। इससे प्रदेश में 50,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे

और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने की दिशा में मदद मिलेगी। देश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए अब मोटर वाहन कानून में नए सख्त नियम शामिल करने का प्रस्ताव है। जनरल टिकट लेना हो या फिर प्लेटफॉर्म टिकट और सीजन मासिक टिकट का नवीनीकरण कराना हो तो इन सब कार्यों के लिए अब आपको रेलवे स्टेशन में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आगरा रेल मंडल के 25 स्टेशनों में 45 ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी ATVM लगेंगी। डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलने से यात्रियों का समय बचेगा, साथ ही लाइन में लगने का झंझट भी नहीं रहेगा। लाइन में लगने के दौरान ट्रेन छूटने का डर भी खत्म हो जाएगा। आगरा रेल मंडल में 100 रेलवे स्टेशन हैं। आगरा कैंट, आगरा फोर्ट सहित 9 स्टेशनों में 36 ATVM लगी हैं। इन सभी स्टेशनों में अभी तक यात्रियों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। यात्रियों को ATVM की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा विभिन्न जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। यात्रियों को त्वरित, सरल और डिजिटल टिकटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। 25 और स्टेशनों को चिन्हित किया जा रहा है, इसमें ईदगाह स्टेशन सहित अन्य शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों में हर दिन 15,000 से लेकर 19,000 यात्री सफर करते हैं। नकद, स्मार्ट कार्ड, UPI समेत विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध होने से टिकट लेना पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और तेज हुआ है। शहर में सोमवार को भी बादल रूठे रहे। सुबह बादल छाए जरूर, लेकिन बरसे नहीं। उमस अधिक होने से पसीना बहता रहा। पंखे और कूलर किसी काम नहीं आए, एयर कंडीशनर में ही राहत मिल सकी। दोपहर में बादल छटे तो तेज धूप निकल आई। दिन भर शहरवासी उमस से परेशान नजर आए। मौसम विज्ञान विभाग ने 8 से 10 जुलाई तक वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। शहर में सोमवार सुबह हल्के बादल छाए रहे, जिससे उमस अधिक रही। सुबह 8:30 बजे अधिकतम आर्द्रता 78% तक पहुंच गई। इससे पसीना टपकता रहा। कूलर और पंखे की हवा में राहत नहीं मिली। बेचैनी के साथ ही घबराहट का अनुभव होता रहा। कूलर की हवा में बैठने पर चिपचिपाहट का अनुभव हुआ। दोपहर 2 बजे तक कभी धूप निकली और कभी बादल छाए। बादल उमड़े जरूर, लेकिन बरसे बिल्कुल नहीं। दोपहर 2 बजे के बाद बादल छठे तो धूप निकल आई। आसमान साफ होने से धूप आंखों और त्वचा को चुभी, इससे लोग परेशान रहे। शाम ढलने पर, हवा चलने पर उमस कम होने से लोगों को कुछ राहत मिली। अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। रविवार को अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रहा था। मंगलवार को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। 8 से 12 जुलाई तक अच्छी वर्षा हो सकती है। 8 जुलाई को बिजली चमकेगी और तेज हवा के साथ वर्षा हो सकती है। 9 और 10 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है। 11 व 12 को हल्की वर्षा हो सकती है। वर्षा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। जिला महिला चिकित्सालय का लगभग 90 करोड़ से 150 बेड की क्षमता के नए भवन का निर्माण सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसमें गंभीर हालात में भर्ती गर्भवती, प्रसूता और नवजात के इलाज के लिए गहन चिकित्सा इकाई ICU के 56 बेड होंगे। सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी की सर्जरी सहित अन्य सर्जरी के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। श्रीमती बीडी जैन गर्ल्स PG कॉलेज से छात्राएं BA और BCom ऑनर्स भी कर सकती हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली बार 3 और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ही प्रवेश के लिए कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध कॉलेजों को स्नातक 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी है। 77 वर्ष पुराने श्रीमती बीडी

गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2026-27 से स्नातक के 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्राचार्य ने बताया कि छात्राएं बीए और बीकॉम ऑनर्स कर सकती हैं। ये 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है। छात्राएं प्रवेश के समय 3 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का चयन कर सकती हैं। बीए की 560 और बीकॉम की 180 सीटों पर प्रवेश लिया जा रहा है। इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्राएं प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कॉलेज की वेबसाइट https://admission.bdjainagra.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया को समझाने के लिए विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक वीडियो लिंक जारी किया है। किसी भी तकनीकी समस्या या पूछताछ के लिए हेल्पलाइन ईमेल आईडी samarth@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। श्रीमती बीबी जैन गर्ल्स पीजी कॉलेज में सितार विषय में परास्नातक एमए की पढ़ाई भी कराई जाती है। संगीत शिक्षा में कॉलेज लंबे समय से अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। एमए सितार, एमए तबला में भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। आगरा कॉलेज में बीकॉम में प्रवेश के लिए सोमवार को द्वितीय कट ऑफ जारी कर दी गई है। प्राचार्य ने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए 65, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 48.60 कट ऑफ है। प्रवेश के लिए 10 जुलाई सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कॉलेज के बीकॉम विभाग में काउंसलिंग होगी। अभ्यर्थी अपने साथ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अंक तालिका व अन्य दस्तावेज साथ लेकर आएं। डीयू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत इस वर्ष पहली बार एक वर्षीय स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लागू होने से विश्वविद्यालय में पीजी सीटों की संख्या में 30 से 35% तक वृद्धि हुई है। इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 11 जुलाई तक पीजी प्रवेश पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा केवल डीयू से यूजीसीएफ 2022 के तहत 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले पात्र विद्यार्थियों के लिए है। प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होगा। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र सोमवार से आरटीआई के माध्यम से ओएमआर शीट प्राप्त करने को आवेदन कर सकते हैं। अप्रैल मई में आयोजित परीक्षाओं के घोषित परिणाम वाले छात्र 15 जुलाई तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत मेरिट मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है तो अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रुपए से बढ़कर 20 रुपए, विलंब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रुपए से 50 और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रुपए से 100 रुपए कर दिया है। इग्नू में प्रवेश शुरू हो गए हैं। अभ्यर्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज स्थित इग्नू केंद्र पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हैं। अधिक जानकारी के लिए केंद्र से संपर्क करें।

चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS के बाद PG करने के इच्छुक युवा डॉक्टरों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस साल से नीट PG परीक्षा के पैटर्न एवं नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से शेड्यूल के साथ पैटर्न एवं नियमों की जानकारी जारी कर दी गई है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में होने वाली परीक्षा में अब छात्रों को 200 के बजाय केवल 180 सवालों के जवाब देने होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 21 जुलाई तक चलेगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकार ने होमगार्ड जवानों तथा उनके आश्रितों के हित में बड़ा निर्णय किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में होमगार्ड, स्वयंसेवकों, अवैतनिक अधिकारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस सुविधा प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूर

दी गई है। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड दिवस के अवसर पर 6 दिसंबर 2025 को आयोजित कार्यक्रम में जवानों व उनके आश्रितों को कैशलेस उपचार की सुविधा मुहैया कराए जाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार प्रति होमगार्ड या स्वयंसेवक या अवैतनिक अधिकारी ₹3,000 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी। योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 35 करोड़ रूपए का खर्च होगा और 1 लाख से अधिक होमगार्ड लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आज की प्रमुख खबरें अब यहीं संपन्न हुईं।

आइए अब सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। प्राप्त सूचना के अनुसार गुड़िया पुत्री श्री बिजेंद्र सिंह। गुड़िया की उम्र 21 वर्ष है, ऊंचाई करीब 4 फुट 5 इंच, चेहरा गोल है, रंगे हुआ, काले बाल हैं और काली आंखें। ये अपने घर से 8 मई 2026 से लापता हैं और विलुप्त होते समय इन्होंने नीले रंग का टी शर्ट और काले रंग का प्लाजो पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी किरावली जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक अन्य सूचना के अनुसार मुन्ना लाल, जिनकी उम्र 58 वर्ष है, ऊंचाई करीब 5 फुट 6 इंच है, ये अपने घर से 8 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर आप थाना प्रभारी सदर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। एक और सूचना, गुमशुदा व्यक्ति का नाम है रीनू। इनकी आयु है 55 वर्ष, ऊंचाई करीब 5 फुट। ये अपने घर से 5 मई 2026 से लापता हैं। इनके बारे में यदि आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो आप थाना प्रभारी सदर जनपद आगरा को सूचित कर सकते हैं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी लोग अपने घर से चले गए हैं, विलुप्त हो गए हैं या गुमशुदा हैं, वो अपने घर जल्द से जल्द लौट आएं।

इस गीत के साथ ही दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की रेडियो की विशेषता शर्मा को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के

0: साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा।

0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
3: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership.

0: in the stipulated 20 overs. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit Kaur.
1: Thank you, Pramod. Temple graft to sin. Trust chair Rai and Mishra exit is the lead in the Times of India, while the Hindustan Times headlines, Ram Temple Trust sets big overhaul in motion. The Statesman headlines, PM Modi in Indonesia to strengthen linkage with Indo-Pacific partners. His visit to Indonesia as part of his three-nation tour is widely covered on the front pages of all newspapers, with pictures of the Indonesian president specially receiving the Indian PM as a special gesture. The story of the National Investigating Agency chargesheeting LET chief Hafiz Saeed is widely covered on the front pages of all newspapers. The Pioneer headlines, NIA charges Hafiz Saeed for Pahalgam terror attack. The torrential rains in Maharashtra have been covered with pictures of the landslide blocking the Pune-Mumbai missing link, even as the Times of India headlines, Pune-Mumbai link cut off for hours as heavy rains hit roads, rail and flights. And finally, a story in The Hindu says that a question in the BSc statistics exam at Kerala University had its answer printed alongside it. While the university sought a report, those part of the preparation called it a silly mistake. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि यह भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं।

0: उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल राबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला दो तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता से संदीप अंदाज गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों में इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ लोगों की जिंदगी में नई तवानाई और उम्मीद पैदा की है। नई दिल्ली में इमदाद बाहमी की वजारत के 5वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से 2021 में कायम की गई इमदाद बाहमी की वजारत ने मुल्क के इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद, शफाफ, टेक्नोलॉजी पर मबनी और मुसाबिकती बना दिया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: उन्होंने कहा कि वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे को दरपेश अहम चैलेंजेस की निशानदेही की, नीज इसकी तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया और ऐसी इसलाहात नाफिज की जिन्होंने पूरे इको सिस्टम को नई शक्ल दी। अमित शाह ने मजीद कहा कि जब भारत 2047 में अपनी आज़ादी की सदसाला तकरीबात मनाएगा तो इमदाद बाहमी की तहरीक एक खुशहाल भारत की मजबूत बुनियाद साबित होगी। 6 जुलाई 2021 को इमदाद बाहमी की वजारत के क़याम को याद करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस फैसले ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता लाखों अफराद के 75 साल के इंतज़ार को ख़त्म कर दिया। जनाब शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी के शोबे को दहाइयों से नज़रअंदाज किया जा रहा था, ताहम इमदाद बाहमी की वजारत ने इसमें नई जान डाल दी है। उन्होंने इस तनकीद को भी मुस्तरद किया कि यह वजारत रियासतों के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। उन्होंने इमदाद बाहमी की वजारत के सूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक मरबूत डिजिटल डेटा बेस तैयार किया गया है जिसमें 30 मुख्तलिफ शोबों के 8,58,000 से ज्यादा इमदाद बाहमी सोसाइटियों और उनके 32 करोड़ अरकान का रिकॉर्ड शामिल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट रुकन डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। इन दोनों ने राम मंदिर दान में मुबैना तौर पर बदउनवानी का मामला सामने आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया था। ट्रस्ट ने नई तकर्री तक कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्र किया है। उन्हीं की शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर दान बेजाबतगियों के मामले में FIR दर्ज की गई थी जिसमें अब तक 8 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मुकर्रर करने का भी फैसला किया है और इसके लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। ट्रस्ट के खजांची गोविंद दियोगिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी वाजह किया कि मंदिर को दान किए गए तमाम जेवरात और कीमती अशिया महफूज हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है और तमाम अशिया की तफसीलात ट्रस्ट के पास महफूज।

0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी शदीद सियासी बुहरान के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने पाकिस्तान हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। एक बाज़ाब्ता बयान में कमेटी ने ऐलान किया कि उसका एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसके मुतालबात पूरे नहीं होते। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रिहायशियों और कश्मीरी बरादरी के अरकान से 9 जुलाई को एहतजाज में शिरकत करने की अपील की है। इतवार को पाकिस्तानी हुकूमत की सख्त कार्रवाई और POK में 600 से ज्यादा कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों पर पाकिस्तानी फौज का जालिमाना रवैया और शदीद हो गया। मुजफ्फराबाद के कई इलाकों से गोलीबारी और झड़पों की इत्तला है। हजारों लोगों ने एहतजाज करके मुबैना नाकाबंदी को खत्म करने, मुवासलाती खदमात की बहाली, खुराक और दवाओं की बिला रुकावट सप्लाई, हिरासत में लिए गए लीडरों की रिहाई और 38 निकाती तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी कानून के तहत JAAC पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। एहतजाज के मुंतजमीन का इल्जाम है कि 600 से ज्यादा कारकुनों और सियासी लीडरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही खुराक, आटा और लाजमी दवाओं की सप्लाई को रोककर हुक्काम ने इक्तसादी नाकाबंदी लगा दी है। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा आले खलीफा से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर कतर से बहरीन पहुंचे हैं। ये उनके 4 खलीजी मुल्कों के दौरे का दूसरा मरहला है जो 5 से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरे में कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के शाह को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक तमन्नाएं पेश की और बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी की सलामती, तहफ्फुज और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में मुकीम भारतीय बिरादरी के अफराद से मुलाकात भी की। अपने इस दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर मजकूरा 4 खलीजी मुल्कों के वज़राए खारजा और आला क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग दिया जा सके और इलाकाई हालात व वाक़ियात के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया जा सके। महाराष्ट्र के साहिली और घाट के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पालघर, रायगढ़, नासिक और पुणे के घाट इलाकों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब मुंबई समेत साहिली अजला और शुमाली महाराष्ट्र के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बाज़ मुकामात पर औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र इंतजामिया ने एहतियाती इकदाम किए हैं, जबकि NDRF और SDRF की टीमों को हसास इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: महाराष्ट्र के घाट के इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है, जहां लोनावाला में 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। मिट्टी के तोदे खिसकने के खतरे के बायस कई सड़कों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद सियाहती मकामात को एहतियातन बंद कर दिया गया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसी बारिश की पेशगोई के बाद इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक, सतारा और पुणे के हसास घाट इलाकों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ मुंबई समेत कई साहिली जिलों में 100 से 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और वस्ती महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मुल्क के शुमाल मशरक के बाज़ इलाकों, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हल्की से औसत बारिश का इम्कान है। भारत के पहलवानों ने थाईलैंड के शहर पाटाया में हुए 20 साल की उम्र तक के एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पहलवानों ने मजमूई तौर पर 20 तमगे अपने नाम किए, जिनमें 4 तलाई, 7 चांदी और 9 कांसे के तमगे शामिल हैं। भारत ने मुख्तलिफ वजन के जुमरों में मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और खवातीन की कुश्ती और मर्दों के फ्री स्टाइल दोनों जुमरे के टीम मुकाबलों में टॉप 3 में जगह बनाई।

0: फुटबॉल में स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल मिकेल मेरिनो ने दूसरे हाफ के पहले मिनट में किया। इधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ऐलान किया है कि वो अपनी टीम के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो जाने के बाद अगले फीफा वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर जकार्ता पहुंचे, सदर प्राबोवो सुबियांतो ने किया इस्तकबाल। इसी खबर को रोजनामा इनकलाब और दीगर अखबारात ने भी अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के मामले में एनआईए की जिमनी चार्जशीट में हाफिज सईद मुलजिम करार, इस खबर को बेशतर अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है, मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 3 सीटों पर 24 जुलाई को होगा जिमनी इंतखाब। फीफा आलमी कप में नॉर्वे ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से शिकस्त देकर पहली बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
0: खास खास खबरें एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकत दारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत में पाटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और फिल्म का नाम है सिर्फ तुम।

सिर्फ तुम। इस फिल्म के गीत के बाद आइए आप सुनते हैं इश्क फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है उदित नारायण और विभा शर्मा ने, बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।

जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, असम का गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। गीतांजलि कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल एक बार फिर से मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, संगीत अनु मलिक का और फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम।

0: अकेले हम अकेले तुम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी अनु मलिक ने। कहीं जाइएगा नहीं, हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के उस पार होगा एक और गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। लीजिए अब सुनिए कयामत से कयामत तक, इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

कयामत से कयामत तक इस फिल्म के गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:15 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
1: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इससे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया।

कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया।

0: रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा बेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चिंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। बेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
1: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ता है।
0: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलता पूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
2: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी के लिए परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा

0: विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है आदि बर्मन ने। फिल्म का नाम है बहारों के सपने।

बहारों के सपने, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ अनामिका फिल्म का गीत। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे अनामिका फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार का गाया ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है एस डी बर्मन ने।

आराधना फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी किशोर कुमार की आवाज़ में। बोल थी आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी SD बर्मन ने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

छाया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल थे राजेंद्र कृष्ण के और धुन बनाई थी सलिल चौधरी ने। इसी के साथ कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रविंद्र कुमार शर्मा के गाए हुए लोकगीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आज आपने रविंद्र कुमार शर्मा के गाए हुए लोकगीत सुने। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

0: जब प्यार किसी से होता है। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। बोल थे आनंद बख्शी के और धुन बनाई थी जतिन ललित ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर

0: exciting benefits. Aaj hi visit kare apni nearest SBI branch aur Premier Banking activate kare. Terms and conditions apply.
1: कार्यक्रम का अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है अलका याग्निक और ए हरिहरन ने. बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, संगीत जतिन ललित का, फिल्म का नाम है खामोशी द म्यूजिकल.
2: मैं एनी, मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते. मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ. हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ. आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं. है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना

आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के बोल। धुन बनाई है जतिन ललित ने, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

बेवफा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, बोल थे समीर के, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। लीजिए अब सुनिए अनु मलिक के संगीत निर्देशन में समीर के बोल। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार शानू की। फिल्म का नाम है सोल्जर।

सोल्जर फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग आसावरी में ख्याल।

सत्य और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग आसावरी। आइए अब सुनते हैं राग बिलावल में पंडित भीमसेन जोशी से ये ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग बिलावल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर।

भारतीय संगीत जगत के उस विलक्षण गायक के बारे में जिसकी आवाज केवल कानों को नहीं बल्कि सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रही हूँ सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खेर की। साथियों, भारतीय संगीत जगत में कुछ ऐसे गायक हैं जिनकी आवाज केवल कानों तक ही नहीं बल्कि सीधे हृदय तक पहुंचती है। ऐसे ही विलक्षण और लोकप्रिय गायकों में कैलाश खेर का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। साथियों, आपका जन्म आज ही के दिन यानी कि 7 जुलाई को वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ। आपके पिता पारंपरिक लोक गायक थे, इसलिए आपके घर में संगीत का माहौल था। इसी कारण से आपको बाल्यकाल से ही संगीत सुनने का अवसर मिला। धीरे धीरे संगीत आपके जीवन का अहम हिस्सा बन गया। युवावस्था में आप मुंबई आ गए और आपको छोटे मोटे जिंगल व विज्ञापन गीत गाने का अवसर मिला। आपने फिल्मी पर्दे पर अपना पहला कदम अंदाज फिल्म के गीत रब्बा इश्क ना होवे से रखा। इसके बाद आपने वैसा भी होता है पार्ट 2 फिल्म का गीत अल्लाह के बंदे गाया। ये गीत पूरे देश में लोकप्रिय हुआ और कैलाश खेर रातों रात संगीत प्रेमियों के बीच चर्चित हो गए। आज भी ये गीत निराश मन को आशा और सकारात्मकता का संदेश देता है। तो साथियों, आइए हम भी सुनते हैं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के बारे में। साथियों, कैलाश खेर ने अल्लाह के बंदे गीत के बाद एक से बढ़कर एक यादगार गीत गाए। वर्ष 2004 में आपने अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गीत गाया। वर्ष 2005 में वादा फिल्म का मौला गीत और एक अजनबी फिल्म का गीत बर्फ खुशी है। इसी वर्ष आपने मंगल पांडे फिल्म के 3 गीत गाए। इसके बाद आपने वर्ष 2006 में कॉरपोरेट फिल्म का गीत ओ सिकंदर गाया। वर्ष 2006 में आपने अपनी पहली एल्बम तेरी दीवानी रिलीज की, जिसे आपके सूफी फ्यूजन बैंड कैलाश ने प्रस्तुत किया। ये गाना आपके सबसे प्रसिद्ध गानों में से एक बन गया। आपकी विशिष्ट सूफियाना और लोक संगीत से सजी गायकी ने आपको एक अलग पहचान दिलाई। आपकी आवाज में आध्यात्मिकता, भक्ति, लोक संस्कृति और भारतीय संगीत की आत्मा का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। आपकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता आपकी अनोखी आवाज है। आपकी आवाज में गहराई, दर्द, भक्ति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आपको भारतीय लोक धुनों को आधुनिक संगीत के साथ जोड़ने में महारत हासिल है। आपकी प्रस्तुति श्रोताओं को भाव विभोर कर देती है, जिसका प्रमाण आपने वर्ष 2007 में बखूबी दिया। आपने इस वर्ष सलामे इश्क फिल्म का गीत या रब्बा गाया। ये गीत आपकी गायकी का ऐसा अनमोल उदाहरण है जिसमें प्रेम, विरह और प्रार्थना की भावनाएं एक साथ स्वर पाती हैं। आपकी आवाज इस गीत को केवल एक फिल्मी गीत नहीं रहने देती, बल्कि श्रोताओं की आत्मा को स्पर्श करने वाला अनुभव बना देती हैं। तो साथियों, आइए हम भी सुनते हैं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के बारे में। साथियों, वर्ष 2007 में आपने फना फिल्म का चांद सिफारिश गीत गाया। इसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इसके बाद आपने हमने जीना सीख लिया, कमीने, लव सेक्स और धोखा इत्यादि फिल्मों के गीत गाए। वर्ष 2006 में आपने दिल्ली सिक्स फिल्म का अर्जिया गीत गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद आपने अपनी एल्बम के लिए गीत गाए, तौबा तौबा, बम लहरी, ये दोनों ही गीतों को श्रोताओं ने खूब पसंद किया। साथियों, आपने कन्नड़ फिल्मों के लिए भी गीत गाए। इसके अलावा आपने टीवी चैनल स्टार प्लस की सीरीज दिया और बाती, हम का टाइटल ट्रैक, टीवी चैनल कलर्स की सीरीज उड़ान का टाइटल ट्रैक और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान का एंथम कंपोज और गाया। इसके बाद आपने फिर से फिल्मों की ओर रुख किया। वर्ष 2015 में मसान और बैंक चोर फिल्मों में गीत गाए। वर्ष 2017 में पोस्टर बॉयज फिल्म का गीत नूर ए खुदा और सरकार 3 फिल्म का गीत समधाम गाया, जिसे श्रोताओं ने खूब पसंद किया। इसके बाद वर्ष 2010 में आपने 2.0 फिल्म का नन्ही सी जान गाया। आपके सूफियाना अंदाज और संवेदनशील आवाज ने इस गीत को बेहद मार्मिक बना दिया, जो हम सभी के दिल को छू जाता है। तो साथियों, क्यों ना हम भी इस मर्म स्पर्शी गीत को गुनगुनाएं।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खैर की। साथियों, कहते हैं कि संगीत वो साधना है जो मनुष्य को स्वयं से और ईश्वर से जोड़ देती है। आपकी गायकी इस बात को पूरी तरह सार्थक करती है। आपकी आवाज़ मन को शांति देती है, आत्मा को स्पर्श करती है और जीवन में आशा का संचार करती है। आप एक भारतीय पॉप रॉक गायक हैं, क्योंकि आपकी गायकी शैली भारतीय लोक संगीत से

इत्यादि फिल्मों के लिए आपने गीत गाए। ये गीत हैं या खुदारा माफ कर, मौला मेरे, छोटी सी चिरैया, वंदे मातरम, बूम बूम, हिंदुस्तान मेरी जान, ललकार, ए मौला मेरे हो तैयार, जैसे कई सुपरहिट गीत शामिल हैं। इन सभी गीतों में आपकी विशिष्ट आवाज और अद्वितीय शैली ने एक अलग पहचान दिलाई। आप केवल गीत नहीं गाते बल्कि हर सुर में जीवन, प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश पिरो देते हैं। तो साथियों, आइए हम भी सुनते हैं आपकी इस अद्भुत शैली को इस गीत के माध्यम से।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सूफी गायक कैलाश खैर की। साथियों, कैलाश खैर केवल एक गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की उस परंपरा के संवाहक हैं जो सुरों के माध्यम से प्रेम, आध्यात्म, करुणा और मानवीय संवेदनाओं का संदेश देती है। आपकी गायकी सुनना केवल संगीत का आनंद लेना नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा पर निकल पड़ना है। आपने सुपरहिट फिल्म बाहुबली के लिए कौन है वो और बाहुबली 2 फिल्म के लिए जय जय कारा गीत गाए। इसके साथ ही आपने सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 में काली महाकाली गीत गाया। साथियों, कैलाश खैर ने अब तक 18 भाषाओं में गाने गाए हैं और 300 से अधिक गीत बॉलीवुड फिल्मों में गाए। आपके इस अमूल्य योगदान हेतु आपको वर्ष 2010 में यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में आपको भारत का 4th सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथियों, आपकी गायकी भारतीय संस्कृति और सूफी परंपरा की अमूल्य धरोहर है। आप आज भी अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, क्योंकि सुरों का सफर कभी समाप्त नहीं होता जो हर उस दिल में जीवित रहता है जो संगीत से प्रेम करता है। कैलाश खैर का स्वर भी ऐसा ही अमर स्वर है। तो साथियों, ऐसे अमर स्वर साधक कैलाश खैर को हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र की ओर से ढेरों शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, आपके दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और साथ ही आपको समर्पित करते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और अब समय है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में कैच द रेन विषय पर। साथियों, प्रकृति ने मानव को जल, वायु, भूमि और वन जैसी अमूल्य धरोहरें प्रदान की हैं। इसमें वन मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों का निरंतर विनाश हो रहा है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, जैव विविधता का ह्रास और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को वृक्षों के महत्व से परिचित कराने तथा अधिकाधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। साथियों, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को जन आंदोलन का रूप देना व पर्यावरण संरक्षण के प्रति नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न करना था। आज ये अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी का उत्सव बन चुका है, क्योंकि वृक्ष धरती का श्रृंगार हैं, हमारे जीवन का आधार हैं।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में कैच द रेन विषय पर। साथियों, प्रकृति का संतुलन दो अनमोल धरोहरों वन और जल पर आधारित है। यदि वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो जल उसका जीवन रक्त है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, भूजल का अत्यधिक दोहन तथा वनों की कटाई मानव सभ्यता के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। ऐसे समय में वर्षा जल का संरक्षण एक प्रभावी और टिकाऊ समाधान के रूप में सामने आया है। इसी उद्देश्य से कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा जल को संचित करें। कैच द रेन अभियान की शुरुआत वर्ष 2021 में राष्ट्रीय जल मिशन तथा जल शक्ति मंत्रालय के नेतृत्व में की गई। इसका उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन, भूजल पुनर्भरण तथा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। यह अभियान नागरिकों, स्थानीय निकायों, विद्यालयों, उद्योगों और सामाजिक संगठनों की सहभागिता पर विशेष बल देता है, क्योंकि जल है तो कल है और वर्षा जल का संरक्षण ही भविष्य का सुरक्षित आधार है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में कैच द रेन विषय पर। साथियों, वन और जल एक दूसरे के पूरक हैं। जहां अधिक वृक्ष होते हैं, वहां वर्षा का जल भूमि में अत्यधिक मात्रा में समाहित होता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और वर्षा के जल को बढ़ने से रोकती हैं। दूसरी ओर पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर वन समृद्ध होते हैं। साथियों, आज अनेक क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है। नदियां सिकुड़ रही हैं, भूजल स्तर नीचे जा रहा है और गर्मियों में पेयजल की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। साथ ही अंधाधुंध वृक्षों की कटाई से वृक्षारोपण असंतुलित हो रहा है। यदि हम वृक्षारोपण के साथ साथ वर्षा जल का संचयन करें तो इन दोनों समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव है, क्योंकि जब वृक्ष धरती का श्रृंगार बनते हैं और वर्षा की बूंदें भविष्य का आधार बनती हैं, तभी प्रकृति और मानव का संबंध पूर्ण होता है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में कैच द रेन विषय पर। साथियों, भारत के अनेक क्षेत्रों में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। कई नदियां मौसमी बनती जा रही हैं और अनेक शहर गर्मियों में पेयजल संकट का सामना करते हैं। दूसरी ओर वर्षा का अधिकांश जल बहकर नदियों और समुद्र में चला जाता है। यदि इस जल का वैज्ञानिक ढंग से संचयन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी सोच का व्यवहारिक रूप है कैच द रेन। साथियों, कैच द रेन अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि वर्षा जल का अधिकतम संचयन करना, भूजल स्तर में सुधार लाना, जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, इसके साथ ही पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना व जल के सतत एवं विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, और सबसे बड़ा उद्देश्य है जल सुरक्षा सुनिश्चित कर भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना। साथियों, कैच द रेन जहां भी गिरे, जब भी गिरे, वर्षा जल को संचित करें, क्योंकि वर्षा की प्रत्येक बूंद भविष्य की अमूल्य पूंजी है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह के उपलक्ष्य में कैच द रेन विषय पर। साथियों, जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर की छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित कर सकता है, जल का अपव्यय रोक सकता है, पेड़ लगा सकता है तथा दूसरों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि छोटी छोटी पहल मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकती है। क्योंकि बूंद बूंद से भरता है सागर, बूंद बूंद से जीवन समरता है। आइए वर्षा की हर बूंद को सहेजें, यही कैच द रेन का सच्चा संदेश है।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए, किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं।
0: जी
2: तो अजीत जी, क्यों न इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की।
2: जी,
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया।
2: जी
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता।
0: जी तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की।
2: जी
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी।
2: जी सचमुच। तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है।
2: जी
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है। लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
0: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे

0: से पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
1: जी।
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
1: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
1: जी,
0: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
1: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
0: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
1: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
0: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
1: जी।
0: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
1: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
0: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: Your attention, please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention, please. Air India announces the...
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ
4: आओ चलो आओ।

0: कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
2: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
0: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
2: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
2: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
2: अच्छा अच्छा।

0: अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
1: बाप रे, कितना विशाल है
0: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
1: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
0: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के

0: इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
1: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
2: चलिए पापा।
0: यहाँ गीजा में तीन पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
2: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
0: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
2: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
0: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
1: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
0: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
2: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
0: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
1: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
1: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
1: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
1: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
1: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो, आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ है?
0: अभी आ रहे, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ बेकादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसी के साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम NCERT यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं फिल्म उरी का ये गीत यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की मधुर आवाजों में। धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे उरी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म भारत से, अभिजीत की मधुर आवाज में। इरशाद कामिल के लिखे इस गीत की धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म भारत का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म मणिकर्णिका का ये गीत, जिसे सुर दिए हैं शंकर महादेवन ने। संगीत रचना है शंकर एहसान लॉय की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मणिकर्णिका का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म लुका छुपी का ये गीत करण सहमवी की मधुर आवाज में, जिसे संगीतबद्ध किया है तनिष्क बागची ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म लुका छुपी का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म पलटन का ये गीत सोनू निगम की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पलटन का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म अंधाधुन का ये गीत, अमित त्रिवेदी की मधुर आवाज में। गीतकार व संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे अंधाधुन फिल्म का ये गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में सुगमता आएगी।
2: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की UPI इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसे उन्होंने भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्र ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिनतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का बिनतांग आदिपूर्णा सम्मान से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। इस दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी को मजबूती प्रदान की जा सके। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 132 अंक बढ़कर

0: देवी मंदिर, नेपाल, रीठा साहब आदि कैलाश और ननकाना साहब तक रसाई फराहम करेगी। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलकत श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक बढ़ाई गई टनकपुर पीलीभीत मुसाफिर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, मैं आपकी सखी शेफाली जैन आकाशवाणी के कार्यक्रम घर संसार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे परिवार, स्वास्थ्य, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी गहराई से संबंधित है। हमारा आज का विषय है हरियाली से खुशहाली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, जल संकट और पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हरियाली का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। पेड़ पौधे केवल प्रकृति की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि हमारे जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहनों, हम सभी अपने परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, परिवार में सुख शांति बनी रहे और आने वाला भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों का सीधा संबंध हमारे पर्यावरण से भी है? यदि वातावरण शुद्ध होगा, हवा स्वच्छ होगी, जल सुरक्षित होगा और प्रकृति संतुलित होगी, तभी हमारा जीवन भी खुशहाल हो सकेगा। यही कारण है कि कहा जाता है हरियाली ही खुशहाली का आधार है। हमारे भारतीय जीवन और संस्कृति में वृक्षों को सदैव विशेष सम्मान दिया गया है। हमारे त्योहारों, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में भी प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव दिखाई देता है। पीपल, बरगद, नीम और तुलसी जैसे वृक्षों और पौधों को पूजनीय माना गया है। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही समझ लिया था कि मानव जीवन और प्रकृति का संबंध एक दूसरे से अटूट है। यदि प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। घर की महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। परिवार के संस्कारों से लेकर स्वास्थ्य और देखभाल तक की जिम्मेदारी वे बखूबी निभाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बहनों, हम सभी महिलाएं अपने घर के आंगन, छत, बालकनी या आसपास के क्षेत्र में एक या दो पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें और ये संकल्प लें, तो ये एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सकता है। पौधा लगाना केवल एक कार्य नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज आवश्यकता है केवल पौधारोपण करने की नहीं, बल्कि लगाए गए पौधों के संरक्षण और संवर्धन की भी। अक्सर हम उत्साह में पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उनकी नियमित देखभाल नहीं कर पाते। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो पौधा हम लगाएं, वह एक दिन बड़ा वृक्ष बनकर समाज और पर्यावरण को लाभ पहुंचाए। पौधों को समय पर पानी देना, उन्हें पशुओं से बचाना और उनकी नियमित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है जितना उन्हें लगाना। बहनों, आज बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण हरियाली लगातार कम होती जा रही है। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बढ़ता प्रदूषण, गर्मी में वृद्धि,

शिक्षा और जल संकट जैसी समस्याएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि यदि हमने अभी से प्रकृति की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व हम सभी को सिखाएं तो वे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। हमें अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी के साथ साथ प्रकृति के करीब भी ले जाना चाहिए ताकि उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित हो सके। आज समय की मांग है कि हम केवल सरकार या प्रशासन पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं भी आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हम अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, बच्चों की सफलता या किसी भी विशेष अवसर पर एक पौधा लगाने का संकल्प ले सकते हैं। ये परंपरा न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान

ये परंपरा न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगी बल्कि हमारे जीवन और समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनेगी। वन महोत्सव सप्ताह हमें ये संदेश देता है कि प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व केवल एक सप्ताह तक सीमित नहीं होना चाहिए बहनों, बल्कि हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। एक पौधा लगाकर हम केवल एक वृक्ष नहीं उगाते बल्कि हम शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, बेहतर स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का निर्माण करते हैं। और जब हम प्रकृति, समाज और भविष्य की बात करते हैं तो हमें उन महान साहित्यकारों और चिंतकों को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने अपने विचारों और लेखन से समाज को जागरूक करने का कार्य किया। आज बहनों, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार, निबंधकार और कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जयंती भी है। उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में हुआ था। उनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के गुलेर क्षेत्र से संबंधित थे जिसके कारण उनके नाम के साथ गुलेरी जुड़ा। वे हिंदी, संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी सहित अनेक भाषाओं के विद्वान थे। उनकी प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मूल्यों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनका जीवन और साहित्य हमें ये प्रेरणा देता है कि समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समान रूप से समझें और उनका संरक्षण करें। चलिए बहनों, अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत

ब्रेक के बाद आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जो भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित ना हो। बढ़ती महंगाई, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और जीवन की अनिश्चितताओं को देखते हुए बचत और निवेश का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे न केवल एक घर का बजट संभालती हैं बल्कि परिवार की आर्थिक मजबूती में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अक्सर हम सोचते हैं बहनों कि बचत तभी संभव है जब आय अधिक हो, जबकि वास्तविकता ये है कि बचत की शुरुआत छोटी राशि से भी की जा सकती है। कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर महीने नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी बचत भविष्य में बड़ी आर्थिक सहायता बन सकती है। यही बचत आगे चलकर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं, आपातकालीन परिस्थितियों और वृद्धावस्था में सहारा बनती है। ये समझना भी आवश्यक है कि बचत और निवेश दोनों अलग अलग बातें हैं। बचत का अर्थ है अपनी आय का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना, जबकि निवेश का अर्थ है उस बचत को ऐसी योजनाओं में लगाना जिससे समय के साथ उसका मूल्य बढ़ सके। केवल पैसे को घर में या बचत खाते में रखने से ही काम नहीं चलता, बल्कि आवश्यकता के अनुसार सही निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। आज हम महिलाओं के लिए बचत और निवेश के कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। बैंक की सावधि जमा यानी FD, आवर्ती जमा यानी RD, डाकघर की बचत योजनाएं, सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF, सुकन्या समृद्धि योजना और व्यवस्थित निवेश योजना यानी SIP जैसे विकल्पों के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है। निवेश करते समय अपनी आय, आवश्यकताओं और जोखिम उठाने की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान समय में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन निवेश सुविधाओं ने आर्थिक प्रबंधन को पहले से अधिक सरल बना दिया है। हालांकि इसके साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। किसी भी अनजान लिंक, फोन कॉल या लालच देने वाली निवेश योजनाओं पर भी बिना पूरी जानकारी के भरोसा नहीं करना चाहिए। हम महिलाओं की आर्थिक जागरूकता केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की आर्थिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। यदि परिवार की हम महिलाएं बचत और निवेश के प्रति जागरूक होंगी तो वे बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में सक्षम होंगी और परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान हम दे सकते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि बहनों, बचत केवल पैसे जमा करना नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की नींव तैयार करना है।

0: इसलिए हमें आज से ही नियमित बचत और समझदारी पूर्ण निवेश की आदत विकसित करनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकें। और बहनों, समृद्ध भविष्य का निर्माण तभी संभव हो सकता है जब समाज को बदलने में शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए सुनते हैं इसी पर वार्ताकार विभा अग्रवाल जी के द्वारा।
1: बदलाव आना प्रकृति का नियम है। हम सभी ऐसे समाज में रहते हैं जहां नित्य नए बदलाव देखने को मिलते हैं। कोई भी क्षेत्र देखने के पश्चात क्या आप कह पाएंगे कि इसमें बदलाव नहीं आया? जी नहीं, कदापि नहीं। अब आप चिकित्सा का ही क्षेत्र लीजिए। वहां पर जो बीमारी लाइलाज थी, जिसका इलाज संभव नहीं था, अब उसका इलाज आसानी से प्राप्त हो जाता है। अगर कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि किसान आज आधुनिक उपकरण और अच्छी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर अपनी फसल की गुणवत्ता में सुधार कर रहा है। इसी प्रकार चाहे विज्ञान का क्षेत्र लीजिए अथवा तकनीकी का, चाहे आवागमन का क्षेत्र हो अथवा अंतरिक्ष का, सभी में आपको बदलाव देखने को मिलता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये बदलाव कैसे संभव है? कौन है जो इन बदलावों के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? शायद नहीं। बदलाव तभी संभव है जब हमारी सोच अच्छी है, जब हमारा व्यक्तित्व प्रभावी है। और इन सब के पीछे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक शिक्षक की। जहां एक और कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये जिम्मेदारी शिक्षक की होती है कि ये भविष्य अच्छा होगा अथवा बुरा। एक अच्छी सोच व अच्छे व्यवहार का वृक्ष बोने में महत्वपूर्ण है कि बचपन से ही जल व धूप के रूप में शिक्षक और समझदार माता पिता के रूप में उस बालक को सींचा जाए, जिससे ये वृक्ष बड़ा होकर देश की सफलता और विकास में सबसे आगे खड़ा हो सके। शिक्षक एक किसान की तरह होता है, जो बचपन में कोमल मिट्टी जैसे मन में ज्ञान के असंख्य बीज बोता है, जिसकी फसल वह बालक जीवन भर काटता है। शिक्षक एक कुमार की भांति भी होता है, जिसका एक हाथ ऊपर से आकार देता है तो दूसरा हाथ नीचे से संभाले भी रखता है और एक खूबसूरत रूप देने में सहायक होता है, जो देश के विकास और तरक्की में सहयोग करता है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी कहानियों और अभिव्यक्तियों, हंसाने गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर उनको प्रेरित करता है कि उच्च और नैतिक आचरण को वह अपने आचरण में उतारे। समाज में जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा, तब तक बदलाव की आशा हम नहीं कर सकते। शिक्षक अपनी शिक्षा के द्वारा न सिर्फ व्यक्ति को सही विचारों की तरफ प्रेरित करता है, बल्कि देश की उन्नति के लिए भी नए आयाम खोलने में सहायक होता है। यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। आज लालच और ईर्ष्या की भावना समाज में दीमक की तरह फैल रही है, जो देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। शिक्षक अपनी नैतिक शिक्षाओं और आचरण के माध्यम से समाज में फैल रही बुराइयों को दूर करने में सहायक होता है। शिक्षक के आचरण और व्यक्तित्व का प्रभाव बालक के मन पर पड़ता है और वह उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है। बालक के जीवन में माँ के पश्चात शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अद्भुत परिवर्तन लाने का कार्य करता है। उसे उचित व अनुचित का एहसास कराता है, अच्छे और बुरे की समझ देता है। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बालक के जीवन को संवारने का श्रेय शिक्षक को ही जाता है। उसमें आदर और सम्मान की भावना को जागृत कर समाज की संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने में मदद करता है। शिक्षक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो सही मायने में एक इंसान, समाज व राष्ट्र के निर्माण में पूर्णतः सहायक होता है। अगर चाणक्य अखंड भारत का स्वप्न नहीं देखते तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा व्यक्ति भारत पर राज नहीं कर पाता। यदि

0: कृष्ण गीता उपदेश नहीं देते तो अर्जुन का जीवन लक्ष्य रहित रह जाता। कभी सोचा है आपने, अगर शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते, नहीं सिखाते, तो हम अपने शब्दों में आत्मविश्वास भर पाते? क्या हम अपने उच्चारण और वार्ता को प्रभावी बना पाते? शिक्षक हमारी छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारते तो क्या सही और गलत में अंतर जान पाते? जरा सोचिए, एक गलती होने पर उसे कई बार सही करने की सजा नहीं मिलती तो हम आगे बढ़ पाते जीवन में? जी नहीं, आत्मविश्वास, प्रभावी उच्चारण व वार्तालाप के अभाव में हम अपने देश को उस ऊंचाई तक कभी नहीं पहुंचा पाते जहां आज वो अपना झंडा लहरा रहा है। हम उतना विकास भी नहीं कर पाते जिसके कारण दुनिया के सभी देशों में आज उसने अपना स्थान बना लिया है। इसी आत्मविश्वास के साथ आज व्यक्ति अंतरिक्ष पे जाने में सफल हो सका है और वहाँ की नई रोचक जानकारियाँ प्राप्त कर सका है और देश की कई बुराइयाँ जैसे भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को कम करने में सहयोग कर पाया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर माली होते हैं। किसी एक विकसित, समृद्ध और खुशहाल देश व विश्व के निर्माण में शिक्षक एक आधारशिला का कार्य करते हैं। किसी भी राष्ट्र के वास्तविक निर्माता, शिल्पकार उस देश के शिक्षक ही होते हैं। इसी के साथ सभी शिक्षकों को समर्पित कुछ पंक्तियाँ। पंख निकले हैं, उड़ना अभी बाकी है, रौनक बहुत है, शान अभी बाकी है, शिक्षा पाली मगर इम्तिहान बाकी है, जिसने उड़ना सिखाया उन फरिश्तों का सम्मान अभी बाकी है।
1: समाज को बदलने की शुरुआत किसी कानून से नहीं बहनों, बल्कि एक शिक्षक की कक्षा से होती है। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं देते बल्कि संस्कार, सोच और सही दिशा भी देते हैं। यदि हमें एक शिक्षित, जागरूक और आदर्श समाज का निर्माण करना है तो हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। अभी आपने वार्ता सुनी समाज को बदलने में शिक्षकों की भूमिका, वार्ताकार विभा अग्रवाल जी के द्वारा। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, पुनः उपस्थित होती हूँ।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: अल्प विराम के बाद आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कभी ना कभी तनाव, चिंता और परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसे में कई बार छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है और अक्सर हमारा गुस्सा उन लोगों पर निकल जाता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। कभी बच्चों पर, कभी अपने जीवन साथी पर, कभी माता पिता पर, तो कभी परिवार के अन्य सदस्यों पर। उस समय तो हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब एहसास होता है कि बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी हमने कर दी और गुस्सा कर दिया। यही वजह है कि कहा जाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए केवल प्यार ही नहीं बल्कि क्षमा का भाव भी बहुत ज़रूरी है। परिवार और रिश्ते नातों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है अपनापन, विश्वास और एक दूसरे को समझने की भावना। लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। छोटी सी बात पर इतना नाराज हो जाते हैं कि वो झगड़े में बदल जाता है। कई दिनों तक बात नहीं करते हैं, मन में इतनी सारी शिकायतें होती हैं लेकिन एक सॉरी का फील नहीं आ पाता है। लगता है अगर हम किसी सामने वाले को सॉरी कहेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमें एक बार ये भाव आ जाएगा कि हमने गलती करी है और हमें सामने वाले से सॉरी कहना चाहिए, तो आप देखिए बहुत हल्का महसूस करेंगे मन से। बस एक बार प्यार से कहें कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये कह देने से बिगड़ी हुई बात भी आसानी से बन जाएगी। क्षमा एक ऐसा महान गुण है जो ना केवल रिश्तों को बचाता है बल्कि हमारे मन को भी शांति देता है। माफ़ी मांगने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता बल्कि ये उसके बड़े दिल और समझदारी का परिचय।

परिचय देता है। इसी प्रकार यदि कोई हमसे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है तो उसे दिल से माफ कर देना भी उतना ही आवश्यक है। कई बार हम अपने अहंकार के कारण रिश्तों को महत्व देने के बजाय अपनी बात को सही साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद यही एहसास होता है कि काश हमने उसे माफ कर दिया होता, काश ये अहंकार मेरे मन में नहीं आता तो ये रिश्ता बच जाता। लेकिन बाद में पछतावा करने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए समय रहते अपने रिश्तों को पहचाने, अपने रिश्तों को बचाए और कोई सॉरी कहे तो उसको अपना लें। और अगर आपसे गलती हुई है तो बस एक बार क्षमा दान कर दें। क्षमा दान करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, समझदार होता है। क्षमा हमें बहनों विनम्र बनाती है, रिश्तों को मजबूत करती है और परिवार में प्रेम, विश्वास, सद्भाव का वातावरण तैयार करती है। कई बार एक मुस्कान, एक स्नेह भरी बात और मुझे माफ कर दीजिए, एक कोई बात नहीं, ऐसे शब्दों का अगर आप उपयोग करेंगे तो पुराने से पुराने मन मुटाव भी बहुत जल्दी आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अगली बार जब किसी अपने से छोटी सी बात पर मन मुटाव हो जाए तो एक बार अवश्य सोचिए कि रिश्ता बड़ा है या अहंकार। जीवन बहुत छोटा है और अपने बहुत अनमोल होते हैं। कई बार एक छोटा सा क्षमा का भाव और एक सच्चा सॉरी न केवल रिश्तों को बचा लेता है बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक मजबूत बना देता है। इसलिए आइए हम सभी अपने जीवन में क्षमा के इस महान गुण को अपनाएं और अपने परिवार तथा रिश्तों को प्रेम, विश्वास और अपनत्व के साथ और अधिक मधुर तथा खुशहाल बनाएं। और इस खुशहाल परिवार के साथ, इस खुशहाल जिंदगी के साथ, कभी कभी हम देखते हैं कि हम सभी को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। कोई घर में आएगा या कहीं हम जाएंगे, सबसे पहले मिठाई भी ले जाएंगे लेकिन चॉकलेट सबसे पहले हम प्रेफर करते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि चॉकलेट हमारे लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो जाती है। लेकिन डार्क चॉकलेट की बात करें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कई ज़्यादा बेहतर है। आपने देखा होगा चॉकलेट का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक लगभग हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जन्मदिन हो, त्यौहार हो, कोई खुशी का मौका हो या किसी को मनाना हो तो चॉकलेट देकर हम उसे मना लेते हैं। हालांकि हम सभी ये जानते भी हैं हर प्रकार की चॉकलेट का अधिक मात्रा में सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप ये माने कि सही प्रकार की चॉकलेट का सेवन अगर किया जाए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रह जाता है। ये मैं बात कर रही हूँ डार्क चॉकलेट की। डार्क चॉकलेट सामान्य चॉकलेट की तुलना में कोको की अधिक मात्रा से बनाई जाती है और इसमें चीनी की मात्रा बहुत कम होती है। यही कारण है कि इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार की बात करें तो सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट का सेवन शरीर को कई प्रकार के लाभ पहुंचा सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। ये रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है और शरीर में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान दे सकता है। कुछ अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट का सेवन तनाव को कम करने और मन को प्रसन्न रखने में मदद कर सकता है। इसलिए चॉकलेट केवल स्वाद और खुशियों का माध्यम नहीं है बहनों, बल्कि सही प्रकार और सही मात्रा में अगर इसको लिया जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो सकता है। स्वाद के साथ साथ यदि स्वास्थ्य का लाभ भी मिल जाए तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो चलिए, आज मैंने बहुत सारी आपको जानकारी दी। इन जानकारियों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने परिवार का और अपना खूब ध्यान रखें। मैं पुनः उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं ए हरिहरन।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ए हरिहरन की आवाज में गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंग

दिबांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
4: जनजाति समूह का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उस

0: इसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, ताहिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान विंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम परवीन सुल्ताना से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग भैरवी।

श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग भैरवी। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अजय पोहंकर से गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं मिश्र पहाड़ी धुन।

श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय पोहंकर से गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे मिश्र पहाड़ी धुन। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:45 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफी की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे यादों की बारात फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं ब्लैकमेल फिल्म से। सुर दिए हैं किशोर कुमार ने, शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में प्रेम गीत फिल्म का ये गीत। इंदिवर के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जगजीत सिंह ने।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में प्रेम गीत फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने, धुन बनाई थी जगजीत सिंह ने। इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इस कार्यक्रम की संवादक हैं विशेषिता शर्मा, प्रस्तुत करता है श्री अनिंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद। नमस्कार, घड़ी की सुइयां अब रात के 10 बजा रही हैं। शोर शराबे वाली गलियां अब खामोश होने लगी हैं और आसमान ने चांदनी की चादर ओढ़ ली है। इस सुनहरी खामोशी के बीच

0: सुरों की खुशबू और आपकी यादों के झरोखों को खोलने का वक्त हो गया है। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा, आज की इस रात की हम सफर। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे बेहद पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो मेरी पसंद में। साथियों, कहते हैं कि खामोश रातें अपने मन से बातें करने के लिए होती हैं, और जब बातें संगीत के साए में हों तो दिल के तार खुद ब खुद झनकृत हो उठते हैं। आज हम और आप मिलकर बुनेंगे कुछ ऐसी ही संगीत भरी यादें। आप भी अपनी पसंद का नगमा सुनने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम की इस पहली घंटी को और उस पर सजने वाली आपकी पसंद को। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम पुष्पांग शर्मा है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ।
0: पुष्पांग जी, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या करते हैं?
1: मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीटेक फाइनल ईयर में हूँ मैं अभी।
0: किस स्ट्रीम से बीटेक कर रहे हैं आप?
1: मैं मैकेनिकल से कर रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा हमारे श्रोताओं को आप जानकारी देंगे कि जो मैकेनिकल स्ट्रीम है उसमें आगे क्या क्या स्कोप है?
1: जी मैम, प्राइवेट सेक्टर्स में हम लोग काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जो कंपनीज वगैरह मशीनरी वगैरह डिजाइन में भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स होती है मैकेनिकल इंजीनियर्स की, और डिफेंस वगैरह में भी जा सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स।
0: तो जैसे अभी आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का है, तो क्या मैकेनिकल वाले जो है वो इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं?
1: हाँ मैम, मैकेनिकल जो ब्रांच है वो एवरग्रीन ब्रांच है। मैकेनिकल का स्टूडेंट किसी भी ब्रांच में जाके कोई भी काम कर सकता है, वो इस हिसाब से उसको तैयार किया जाता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। पुष्पांग जी, जिनका सपना होगा कि वो भी आगे चलकर इंजीनियर बने, तो आप बताएंगे कि अगर किसी को बीटेक करना है तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है?
1: मैम पहले तो जेईई मेंस और एडवांस होते हैं। अगर कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है तो वो सीईटी का भी दे सकता है, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और उसके बाद कॉलेज मिलते हैं, फिर आप बीटेक भी कर सकते हैं। और हर यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने अलग अलग एग्जाम भी करवाती है इंजीनियरिंग के।
0: जी, तो ये जो सीयूईटी का एग्जाम होता है इससे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एडमिशन मिलता है।
1: हाँ जी,
0: तो बहुत सारी जानकारी आपने हमको दी। तो पुष्पांग जी, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मैम मैं सुनना चाहूंगा बॉर्डर मूवी का फिल्म है संदेशे आते हैं।
0: जरूर, हम आपको बॉर्डर फिल्म का ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पांग शर्मा की पसंद पर बॉर्डर फिल्म का ये गीत। आइए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम?
1: मेरा नाम कृष्णा यादव है।
0: कृष्णा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: मैं VIP रोड ईदगाह से बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं?
1: जी बहुत अच्छी हूँ, आपसे बात होकर और अच्छी हो गई हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि हमें आपसे ये कहना चाहिए कि जब जब आपसे बात होती है हमारी, हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है।
1: जब हम आपसे बात करते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं डेली बात करूं आपसे।
0: बिल्कुल, बस आप अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा।
1: जी बिल्कुल।
0: क्या करती हैं कृष्णा जी आप?
1: जी कुछ नहीं, गृहिणी हूँ मैं।
0: ये तो सबसे बड़ा काम है गृहिणी होना, पूरे घर का आप ध्यान रखती हैं, सबका ध्यान रखती हैं, ख्याल रखती
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: तो आप गर्मी के मौसम में अपने बच्चों का, परिवार में जो और भी लोग हैं उनका कैसे ध्यान रखती हैं, जिससे गर्मियां जो है वो आसानी से निकल जाएं, कोई बीमार ना पड़े, सबका स्वास्थ्य जो है वो बना रहे?
1: सबसे पहले ये सलाह देती हूँ, सबसे ज्यादा पानी पियो, जितना पी सको। कोशिश ये करो धूप से बचो, फिर भी जरूरी काम है, जाना ही है, तो थोड़ी सी वो लेके चलो सेफ्टी, जैसे अपना मुंह ढाक के चलो या छाता लगा के, जैसे भी है। गर्मी के दिन है, पुदीना वगैरह का नमक वगैरह जरूर दही में डाल के खाओ, ये काफी गर्मियों से बचाव करेंगे। और बाकी कुछ जूस वगैरह पीते रहो।
0: जी, तो आपकी पक्की सहेली यानी रसोई के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो काम आती हूँ गर्मियों में, जैसे आपने एक अभी नाम लिया पुदीना, और क्या क्या होता है किचन में ऐसा जिसका इस्तेमाल उपयोग हम गर्मियों में कर सकते हैं?
1: सबसे पहले तो मैं पुदीना तो जरूरी है, जीरा नमक भुना के ये बच्चों को डेली देना है दही में डाल के, दही रायता में। और दूसरा जैसे कि ग्लूकोज वगैरह जरूर रखती हूँ अपने किचन में, और नींबू हमेशा इस्तेमाल करती हूँ हर सब्जी में, या शिकंजी बना के देना बच्चों को, जैसे कहीं से गर्मी से आए हैं तो एकदम नहीं, थोड़ा रुक के दे, उससे थोड़ा गर्मी का असर कम रहता।
0: बिल्कुल कृष्णा जी, आज किस गीत की फरमाइश है आपकी?
1: आज मैं सुनना चाहती हूँ हम तुम एक चोरी से बंधे एक डोरी से, ये पिक्चर है धरती कहीं पुकार के।
0: बिल्कुल कृष्णा जी, हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी

0: अभी आप सुन रहे थे कृष्णा यादव की पसंद पर ये गीत। आइए देखते हैं अगली फरमाइश कहाँ से है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: हम जनपद इटावा से बोल रहे हैं, अरविंद प्रताप सिंह।
0: अरविंद जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है।
0: क्या करते हैं?
1: हम खेती करते हैं।
0: तो अभी खेतों में किसकी फसल है?
1: अभी सरसों कट रही है और चना गेहूं खड़ा है, बागवानी भी है।
0: किस चीज के बाग हैं आपके यहाँ?
1: लगभग 80 प्रकार के फलदार वृक्ष हैं, कुछ औषधि पौधे हैं, कुछ मसाले के हैं।
0: जी,
1: फलों में जैसे संतरा, मौसमी, किन्नू, अमरूद, आम के, चीकू, अनन्नास, वर्ष भर कोई न कोई फल चलते ही रहते हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात है, हमें जानकर बेहद खुशी हुई। आज कौन सी गीत की फरमाइश है आपकी?
1: ये दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई।
0: लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
2: दुनिया

0: अगले कॉलर लाइन पे हैं, आइए देखते हैं कौन से हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, आपका परिचय?
1: मेरा नाम सागर सिंह कुशवाहा है।
0: सागर जी, हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए आज हम।
0: अच्छा, और वैसे कहाँ रहते हैं आप?
1: बसेनाबाव, जिला धौलपुर, राजस्थान में।
0: तो कैसा लग रहा है राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आके?
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
0: वैसे तो सारा भारत एक ही है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत अंतर आ जाते हैं। तो राजस्थान से उत्तर प्रदेश में आके कोई अंतर महसूस कर रहे हैं आप?
1: नहीं, कोई ज्यादा खास महसूस तो नहीं है अंतर।
0: क्या गर्मी में कोई अंतर है, राजस्थान में ज्यादा हो उत्तर प्रदेश में कम हो?
1: नहीं, अभी तो बराबर है।
0: अच्छा सागर जी, आज कौन से गीत की फरमाइश है आपकी?
1: अल्लाह अल्लाह ही कसम, मुझे प्यार हो गया।
0: ठीक है, हम आपको आपकी फरमाइश का ये गीत सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका परिचय?
1: जी, मैं कथक गुरु मेघा शर्मा बोल रही हूँ।
0: मेघा जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं आगरा से बोल रही हूँ।
0: आप कथक सिखाती हैं?
1: जी बिल्कुल सिखाती हूँ।
0: किस घराने से हैं आप?
1: जयपुर घराने से।
0: बहुत खूब। तो जैसे अगर कोई कथक सीखना चाहता है तो क्या कोई पर्टिकुलर एज है कि आप तभी सीखना शुरू करें, या किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं?
1: कथक देखिए एक पढ़ाई लिखाई वाला डांस है। इसके लिए हमें एज तो उतनी रंग माननी पड़ेगी जिसमें में हमें 16 तक काउंटिंग आती हो, क्योंकि इसमें तालें होती हैं। संगीत को समझने के लिए हमें तालों को समझना पड़ता है, और तालों में होता है थोड़ा सा गणित। तो उस गणित को समझने के लिए हमें थोड़ी सी काउंटिंग आनी चाहिए। तो वो मोस्टली 5 ईयर्स की एज में तो बच्चों को आ ही जाता है। तो ताले भी सीखते हैं और फिर धीरे धीरे कथक भी समझ जाते हैं। स्कूल वाली मैथ से थोड़ी अलग मैथ है इसकी। जैसे स्कूल में 16 का डबल 32 हो जाता है, लेकिन कथक में अगर 16 का डबल करेंगे तो वो 8 रह जाएगा।
0: तो मेघा जी, जब आप हमारी संस्कृति को बहुत सारे मंचों पर प्रदर्शित करती हैं तो कैसा लगता
1: जी,
0: है आपको?
1: मुझे बहुत अच्छा लगता है। देशभक्ति वाली फीलिंग भी आती है कि हाँ, जरूरी नहीं है हम बॉर्डर पे खड़े होके ही युद्ध करें दुश्मनों से। वो जो कर रहे हैं वो बहुत हिम्मत का काम है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम बन गया है।
0: ये बहुत अच्छी बात कही आपने मेघा जी, और हमें
1: जी
0: बेहद गर्व है आप पर, और हर भारतीय को होगा कि आप अपनी कला के माध्यम से भारत की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, उसको
1: जी
0: अलग-अलग देशों तक या लोगों तक पहुँचा रही हैं। आज किस गीत की फरमाइश है आपकी?
1: आज मेरी फरमाइश है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।
0: फिल्म का नाम भी बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है गीत गाता चल।
0: ठीक है मेघा जी, लीजिए सुनिए आप अपनी पसंद पर ये गीत।
1: जी धन्यवाद।

प्यारे साथियों, वक्त की रफ्तार का पता ही नहीं चलता जब साथ आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं का हो। बातों और फरमाइशों का ये खूबसूरत सफर अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। घड़ियां इशारा कर रही हैं कि अब विदा लेने का समय आ चुका है। आज आपने जिन गीतों को चुना, उन्होंने इस रात की तन्हाई को एक नई रौनक बख्श दी है। उम्मीद है कि सुरों का ये साथ आपके ख्वाबों को और भी हसीन बनाएगा। जाने से पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से की जाती है, तो अगली बार अपनी पसंद दर्ज कराना मत भूलिएगा। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 यानी 0562-350-1852। हमारा दूसरा नंबर है 0562-297-0337 यानी 0562-297-0337। अब मुझे यानी अपनी रेडियो की विशेषता को दीजिए इजाजत। अगले सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त इसी मोड़ पर। तब तक अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। अपनों के करीब रहें और सुनते रहें आकाशवाणी आगरा। शुभ रात्रि।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इस कार्यक्रम की संवादक थी विशेषता शर्मा, प्रस्तुतकर्ता थे श्री अनिंद्र सिंह। इसी के साथ ही हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यही संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के पास विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के अपार अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया संयुक्त कार्य समूह तंत्र के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की और क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों में अब देरी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंडोनेशिया को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से

0: सबसे अधिक लाभान्वित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई हुए हैं। उन्हें 98% गारंटियां प्रदान की गई हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कपास उत्पादन मिशन की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति ने भारत के कपास क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन की समग्र कार्ययोजना की सराहना की। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकड़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तैयार करने की आवश्यकता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झारखंड से 2 मीट्रिक टन आम्रपाली आम की व्यावसायिक निर्यात दुबई के लिए कराया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्यात आदिवासी और महिला किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के मुरलीधरन के साथ एक वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें राज्य में प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रमों और जन स्वास्थ्य पहलों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की गई। श्री नड्डा ने विभिन्न स्वास्थ्य पहलों को लागू करने में राज्य द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और केरलम के स्वास्थ्य सेवा तंत्र को और मजबूत करने के लिए केंद्र से निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। केरलम के वायनाड जिले के कलाडी में आज वायनाड सुरंग सड़क परियोजना के निर्माण स्थल पर भूस्खलन होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं जबकि 7 अन्य लापता हैं। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवा टीमें तैनात की गई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ईरान के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंगम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्तिपरक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा हरियाली हम सब की सांझी जवाबदेही विषय पर श्यामलता माहौर से वार्ता। शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना विषय पर होगी चर्चा और वार्ताकार डॉक्टर प्रशांत यादव से अनेंद्र सिंह की वार्ता सुनिएगा। विषय रहेगा प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता। कार्यक्रम मजदूर मंडल में भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक बुराई विषय पर की जाएगी चर्चा और वार्ताकार शशि कुमार उपाध्याय से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा नीति और समय 6:30। पर डॉक्टर कृष्णा कुमार गुप्ता से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनका रचना संसार कार्यक्रम विविधा में। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का समय रहेगा 7:31 और रात्रि 8 बजे होगा देशभक्ति पर कार्यक्रम भारत भारती। और 8:30 पर चित्रपट

गीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा शास्त्रीय संगीत। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार। गायक कलाकार रविंद्र साठे से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता, विषय रहेगा पशुओं में बांझपन रोग। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कॉन्टैक्ट लेंस विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर वाणी अग्रवाल। कल सुबह 7:31 का समय रहेगा आसपास की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइएगा कार्यक्रम गीतांजलि में, समय 8:45। 9:45 पर सुनिएगा डॉक्टर रोहितास से लोक संगीत और 10:30 पर सुनिएगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर से ख्याल गायन। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

अभी आपने सुना फिल्म सुहाग का ये भक्ति गीत। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, रचना थी आनंद बख्शी की और आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। अगला गीत हमें लिया है फिल्म चार धाम से, आलेख उदय शंकर पाणी का है, संगीत सुरेंद्र कोहली का और आवाजें हैं अनुराधा पोडवाल और हरिहरन की।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

साजिद टंडन और परंपरा टंडन की आवाज से सजे इस गीत को हमने लिया था आदि पुरुष से, रचना मनोज मुंतशिर की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा पर कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत हमने लिया है फिल्म अल्लाह रखा से, संगीत दिया है।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग साथियों। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी आगरा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी मेरे यानी अपनी रेडियो साथी राशि के साथ। नए हफ्ते में नई एनर्जी के साथ आज के कार्यक्रम में स्वागत है हमारे सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का। साथियों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और आज के सुहावने मौसम का आनंद भी ले रहे होंगे। साथियों, आपके आनंद को दुगना करने के लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संगीतमय सफर एनवायरनमेंट रिलेटेड बातचीत के साथ, क्योंकि 1 से 7 जुलाई तक हम मना रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह। साथियों, आजकल आप देख ही रहे हैं कभी बेमौसम बारिश और कभी भीषण गर्मी सीधे हमारी लाइफस्टाइल और सेहत को प्रभावित कर रही है। क्लाइमेट चेंज का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ रहे इस बुरे असर की रोकथाम के लिए भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखा है। अब नेट जीरो एमिशन के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बाल्टी में नल से पानी गिर रहा है और बाल्टी भरने वाली है। बाल्टी को ओवरफ्लो होने से बचाने के दो ही तरीके हैं, या तो नल को पूरी तरह बंद कर दिया जाए या फिर बाल्टी के नीचे एक छेद करके उतना ही पानी बाहर निकाल लिया जाए जितना ऊपर से गिर रहा है। बस ठीक इसी तरह जब हम वातावरण में उतनी ही ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं जितनी कि पेड़ पौधों और नई टेक्नोलॉजी के जरिए वापस अब्सॉर्ब कर ली जाती हैं, तो उसे नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रल कहा जाता है, यानी प्रकृति पर हमारा नेट असर जीरो हो जाता है। साथियों, नेट जीरो का मतलब अपनी लाइफस्टाइल को थामना नहीं है बल्कि उसे स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाना है। देखिए, हम वो फर्स्ट जनरेशन हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को फील कर रहे हैं, लेकिन वो आखिरी जनरेशन है जो इसके बारे में कुछ कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट भी कार्बन छोड़ता है? जब हम एक ईमेल भेजते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं या क्लाउड पर डेटा सेव करते हैं, तो पीछे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स चलते हैं जो बिजली और पानी की खपत करते हैं। साथियों, डिजिटल कचरा कम करना भी नेट जीरो का ही एक हिस्सा है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां समुद्र के प्लास्टिक कचरे से जूते और कपड़े बना रही है जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। नेट जीरो एमिशन को अचीव करने के लिए आप और हम भी छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव कर सकते हैं।

0: जैसे अगर एक नया कपड़ा या गैजेट खरीद रहे हैं तो आप पुराने वाले को रिसाइकल या डोनेट कर सकते हैं। पास की जगहों पर जाने के लिए साइकिल या वॉक चुनें और लंबी दूरी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग करें। फोन चार्जर या टीवी का स्विच सिर्फ रिमोट से बंद ना करें, मेन बोर्ड से बंद करें। देखिए, स्टैंडबाय मोड पर भी ये बिजली और कार्बन कंज्यूम करते हैं। इसके साथ ही आप स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां खाएं साथियों। जो खाना दूर से ट्रैवल नहीं करके आता है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। साथियों, आगे आने वाला समय ग्रीन जॉब्स का है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल फैशन में करियर के लाखों नए मौके भी बन रहे हैं। इसलिए युवाओं के तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना और पेड़ लगाना इस मिशन की जरूरत है। साथियों, इन छोटी छोटी पहलों से एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। आज कंक्रीट के जंगलों के बीच असली जंगल और हरियाली कहीं खोती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का बदलता मिजाज ये गवाही दे रहा है कि हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेड़ लगाना सिर्फ सरकार या किसी संस्था का काम नहीं है, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। अगर आज का युवा अपने हर खास मौके पर एक पेड़ या एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करने का संकल्प ले तो हम आने वाली पीढ़ी को सांस लेने लायक दुनिया बना सकते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के संकल्प से लेकर अपनी साझी हरियाली की जवाबदेही तक आज हमने जाना कि हमारा एक छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए सुनते हैं इसी विषय से जुड़ी वार्ता। वार्ताकार हैं श्याम लता माहौर।
1: हरियाली शब्द सुनते ही मन में आसपास की सुंदर प्रकृति का लुभावना चित्र सामने आ जाता है। हरी हरी घास के मैदान, ठंडी हवा के झोंकों के साथ झूमते हुए पेड़ और भी ना जाने कितने ही मनमोहक दृश्य हैं जो हमारे मन में उभर आते हैं। जब धरती पर पहली बार जीवन की आहट सुनाई दी थी तब वह हरियाली की गोद में ही विकसित हुआ। पौधों की हरितिमा ने न केवल वायुमंडल को जीवनोपयोगी बनाया बल्कि मनुष्य और समस्त जीव जंतुओं को आश्रय, आहार और औषधि प्रदान की। हरियाली और मानव का यह संबंध उतना ही पुराना है जितनी स्वयं पृथ्वी। हमारी प्रकृति अपने हर कोने में अनूठी ही छटा बिखेरे हुए है। जल, जीवन, हरियाली धरती का श्रृंगार है। धरती की इस सुंदरता को बनाए रखना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहे हैं? मानव ने प्रकृति की गोद में ही विकास की ओर पहला कदम रखा था, किंतु जैसे जैसे विकास की परिभाषा बदलती गई, हरियाली हमारी आंखों से दूर और स्मृतियों से विस्मृत होती गई। अब समय आ गया है जब हमें हरियाली के महत्व को पुनः समझना और अपनाना होगा, क्योंकि यह केवल पर्यावरणीय आवश्यकता नहीं मानव अस्तित्व का आधार भी है। हरियाली सिर्फ पेड़ों की हरियाली नहीं होती, यह प्रकृति की सांस है, यह प्रकृति की मुस्कान है, यह मानव अस्तित्व की छाया है। हम हर दिन जिस वायु में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं, जिस मिट्टी पर चलते हैं, उसका अस्तित्व हरियाली पर ही टिका है। हरियाली और हम, यह संबंध सह अस्तित्व का प्रतीक है। हरियाली शब्द का तात्पर्य केवल वृक्ष, पौधों और वनस्पतियों से नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की समृद्धि, संतुलन और सजीवता का संकेत है। यह मिट्टी की नमी से लेकर आसमान के बादलों तक, जल की सतह से लेकर वायु की गति तक हर पहलू में मौजूद रहती है। भारतीय संस्कृति में हरियाली को ईश्वर तुल्य माना गया है। वृक्षों की पूजा, पंचवटी, तुलसी विवाह, वट सावित्री और नवग्रह, वृक्षों की उपासना जैसे परंपराएं केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण के सांस्कृतिक उपाय थे। हरियाली केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि यह भावनात्मक और सामाजिक संबंधों का प्रतीक भी है। जब हम वृक्ष लगाते हैं तो वह हमारे उम्मीद का बीज बनता है। जब वह बढ़ता है तो हम उसमें परिश्रम का फल देखते हैं। जब उसकी छांव फैलती है तो वह समर्पण की छाया बनती है। हरियाली हमें सिखाती है, दिया जाए बिना अपेक्षा के, जिया जाए सबके लिए। हरियाली का मन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह तनाव कम करती है। हरे भरे वातावरण को देखकर मन शांत होता है और तनाव में कमी आती है और यह ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। ध्यान को केंद्रित करने में भी यह बहुत ही सहायक है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम किसी काम को शांति

0: से मन लगाकर कर सकते हैं। पर क्या वर्तमान परिस्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि हमारी धरती हरियाली से भरी पूरी है? यह एक विचारणीय पहलू है कि हमारी प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और दे भी रही है, पर क्या हम इसके बदले में अपनी प्रकृति के साथ न्याय कर पा रहे हैं? वर्तमान में हरियाली का बढ़ता चरण हम सबके लिए एक शोचनीय विषय है। विकास के नाम पर अंधाधुंध जंगलों की कटाई, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, प्लास्टिक प्रदूषण और भौतिक विलासिता की होड़ ने हरियाली को कहीं पीछे ही छोड़ दिया है। यह केवल पर्यावरणीय क्षति नहीं बल्कि भविष्य की त्रासदी का संकेत है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़, चक्रवात, अत्यधिक तापमान जैसी आपदाओं से जूझ रहा है, तो हरियाली ही वह प्राकृतिक कवच है जो इन आपदाओं की तीव्रता को कम कर सकता है। वृक्ष तापमान को नियंत्रित करते हैं, हरित क्षेत्र बारिश के चक्र को संतुलित रखता है, वनों की बहाली कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकती है। आज जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि हरियाली हम सबकी साझी जवाबदेही है। आज हर व्यक्ति, संस्था, सरकार और समाज की जिम्मेदारी है कि वह हरियाली को पुनर्जीवित करने का कार्य करें। सिर्फ बातें करने या किसी के कहने या फिर किसी गांव या शहर को जागरूक करने भर से हमारी धरती की हरियाली हम उसे नहीं लौटा सकते। यह किसी व्यक्ति, परिवार, वर्ग की नहीं बल्कि हम सब की साझी जवाबदेही है कि हम इस हरियाली को बनाए रखें और पूरी कोशिश करें कि इसमें थोड़ा ही सही पर बढ़ाने में अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि अगर यह हरियाली पूरी तरह से हमारी धरती से चली गई तो यह धरती बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी और जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी अंत के कगार पर पहुंच जाएगा। अभी भी समय है, अगर हम संभल जाएं और अपनी गलतियों को फिर से ना दोहराकर अपनी धरती के बारे में सोचें तो हम अपनी प्रकृति को फिर से हरा भरा बनाए रख सकते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि हम जन जागरूकता के साथ साथ कुछ उपाय भी अपनाएं। व्यक्तिगत स्तर पर अपने घर, छत, बालकनी, गली, स्कूल या खेत में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, कूड़े को ना जलाएं, जल और ऊर्जा का संरक्षण करें, बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, उन्हें पौधों की देखभाल सिखाएं। सामाजिक स्तर पर आवश्यक है कि हम सभी मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाएं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और पंचायतों में हरित समितियां बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वृक्ष संरक्षण विधियों को पुनर्जीवित करें। सरकारी और संस्थागत स्तर पर सभी तरह के निर्माण कार्यों से पहले पर्यावरणीय मूल्यांकन को सुनिश्चित किया जाए। शहरों में हरित गलियारे, बॉटनिकल गार्डन, शहरी वनों को बढ़ावा दिया जाए। प्रत्येक विकास योजना में हरियाली का अनिवार्य समावेश हो। सोशल मीडिया और अन्य लोक माध्यम इस विषय में अत्यंत ही प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं। हम सब मिलकर यदि हरियाली को एक आंदोलन बनाएं तो यह सचमुच एक दूसरी हरित क्रांति का सूत्रपात हो सकता है। जनमानस को प्रेरित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान और ऐसे वृक्षारोपण अभियानों का व्यापक प्रचार प्रसार, पर्यावरणीय कहानियों और गीतों का प्रचार, वन एवं पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ बातचीत, एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान हमारी इस साझी जवाबदेही का प्रयास हो सकते हैं।
1: हरियाली हम सब की साझी जवाबदेही। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार थी श्याम लता माहौर। साथियों, समय है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो कार्यक्रम में अब आप आनंद लेंगे इस गीत का जिसे हमने लिया है फिल्म सत्ते पे सत्ता से।

वेलकम बैक साथियों, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अतुल्य भारत की आज की कड़ी में आइए जानते हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में। साथियों, राजस्थान के राजसमंद जिले में शान से खड़े कुंभलगढ़ किले के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये कहानी है अटूट हौसले, गजब की इंजीनियरिंग और एक ऐसे अजय दुर्ग की जिसे दुश्मन कभी जंग में जीत ही नहीं पाए। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार हमारे भारत में ही है? जी हाँ, ये दीवार है कुंभलगढ़ किले की, जो 36 किलोमीटर लंबी है। इस किले को 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। महाराणा कुंभा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि कला और वास्तुकला के मुरीद भी थे। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए उन्होंने 84 में से 32 किले बनवाए थे, जिनमें से कुंभलगढ़ उनका मास्टरपीस था। किले के सबसे ऊपरी हिस्से को कटारगढ़ कहते हैं, ये महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी कहा जाता है। साथियों, इस किले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अजय रहा है। इतिहास में कोई भी राजा इसे युद्ध में सीधे तौर पर नहीं जीत पाया। ये किला अरावली की 13 ऊंची पहाड़ियों के बीच इस तरह से छुपा हुआ है कि नीचे खड़े होकर देखेंगे तो ये किला आपको

कभी दिखेगा ही नहीं, लेकिन किले के ऊपर से दुश्मन कई किलोमीटर दूर से ही पहचान में आ जाता है। साथियों, याद है पन्ना धाय, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी? वो उदय सिंह को छुपाकर इसी कुंभलगढ़ किले में लेकर आई थी। भारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। साथियों, ये किला हमें सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हमारी तैयारी मजबूत है और हौसला फौलादी, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती। तो अगली ट्रिप का प्लान जब भी बनाएं, इस ऐतिहासिक वंडर को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल जरूर करें। साथियों, कोई भी ट्रिप बिना म्यूजिक अधूरी होती है, तो आइए साथ में एंजॉय करते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से।

साथियों, इतिहास के गौरव को देखने और घूमने का मजा तभी ले सकते हैं जब हम खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ और सजग हों। इसलिए आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। साथियों, आज के दौर में संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूक रहना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। इसलिए हेल्थ प्लस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं नीपा वायरस की। नीपा वायरस एक जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला संक्रमण है जो मुख्य रूप से फ्रूट बैट्स यानी चमगादड़ और शुक्रों के जरिए फैलता है। ये एक गंभीर बीमारी है जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखते हैं। इससे बचने का सबसे सही तरीका है सावधानी। आप पेड़ों से गिरे हुए आधे खाए फलों को ना खाएं, खजूर का कच्चा रस पीने से बचें और हाथों को बार बार साफ करते रहें। साथियों, पैनिक करने के बजाय सही जानकारी रखना ही इस संक्रमण के खिलाफ

हमारा सबसे बड़ा हथियार है। साथियों, इसी जानकारी के साथ सेगमेंट हेल्थ प्लस को यहीं संपन्न करते हैं और आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

साथियों, चलते चलते आपको बताते हैं पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग की शक्ति अद्भुत है। जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो आपको खुशी देती है, तो आपका दिमाग एंडोर्फिन नामक हार्मोन छोड़ता है। ये एंडोर्फिन आपको सुखद अनुभूति से भर देते हैं। सकारात्मक सोच आपको अपनी मानसिकता को आकार देने और अपने जीवन को बदलने में मदद करती है। तो अपनी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। और क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम संपन्न करने का, तो हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर जल्द ही करेंगे मुलाकात। आप सुन रहे थे अपनी रेडियो साथी राशि को। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बजे हैं, अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम ग्राम्यालोक में। और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी उपासना पांडे, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ ही अपने साथ साथ अपनों का भी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। क्योंकि भाई, जब सबका हो साथ तभी तो गजब होती है बात। इसलिए हम सभी को अपने घर परिवार में एक दूसरे की मदद करते हुए मिलजुल कर रहना चाहिए। किसान भाइयों, आपके खेती बाड़ी से जुड़े बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, जिनमें हम आप सभी अपने भाई, चाचा, ताऊ की मदद लेते हैं, जिससे काम बहुत आसानी से और जल्दी हो जाता है। अच्छा किसान भाइयों, आप भी सोच रहे होंगे ना कि भाई, आज मैं घर बार की, परिवार की, एक दूसरे के साथ की इतनी बात क्यों कर रही हूँ, है ना? तो भाई ज़्यादा ना सोचें, मैं ही बता देती हूँ कि आखिर बात क्या है। अच्छा बात बताऊं, उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये सारी बातें जो हम आपसे करते हैं या जो करने जा रहे हैं, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हम इन बातों पर अमल करते हुए एकजुट रहकर एक दूसरे का संबल बनते हैं, बिल्कुल अपने मुख्यमंत्री जी की तरह। क्योंकि वो तो भाई पूरे प्रदेश को परिवार मानते हैं, और इसी एवज में सभी प्रदेशवासियों को बिल्कुल परिवार की तरह साथ लेकर चलते हैं और सबकी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं, अपनी तमाम योजनाओं को सफल रूप से संचालित करके, जिनका फायदा लोगों को मिलता है। और उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो कि हमारे किसान भाइयों, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। किसान भाइयों, आज के समय में बढ़ते खर्चों को सिर्फ खेती के माध्यम से पूरा करना बड़ा मुश्किल भरा काम है, क्योंकि आमदनी से बड़ी तो खर्चों की लिस्ट होती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसानों को, युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ही यही था कि रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, साथ ही किसानों को खेती के साथ साथ अपना व्यवसाय भी शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। वाकई किसानों के लिए ये योजना बेशक लाभदायक है। इसके साथ किसान खेती के साथ साथ डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन,

जैविक खाद निर्माण या कृषि यंत्रों की सेवा जैसी गतिविधियां शुरू करके स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये व्यवसाय शुरू करने के लिए आप बैंक से ऋण लेकर के अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे किसान भाई तो समृद्ध हो ही रहे हैं, साथ ही इस योजना के माध्यम से गांव में ही रहने वाले युवाओं को उनके घर के पास यानी कि उनके गांव में ही रोजगार मिल रहा है। यानी जो भी ग्रामीण अंचल के युवा किसान अपनी खेतीबाड़ी के साथ साथ अपना रोजगार अपने घर पर ही शुरू करना चाहते हैं तो वो इस योजना के माध्यम से शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए पात्रता, आयु सीमा और आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज के फोटो और बैंक खाता। किसान भाइयों, आज के समय में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भरता पर्याप्त नहीं हो पाती है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। इसलिए आप भी चाहें कि हमारी भी यानी कि आपकी आमदनी बढ़े, जीवन स्तर और अच्छा हो, तो इस योजना के माध्यम से आप खेती के साथ साथ अपने हिसाब से जो भी व्यवसाय आपको अच्छा लगे वो आप शुरू कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय या अपने नजदीकी बैंक में जाएं। वहां आपको आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जो संपूर्ण जानकारी है वो अच्छे से मिल जाएगी। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखें कि आजकल लोग इस योजना के अंतर्गत पैसे देकर के आवेदन जल्दी से करवाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से सचेत रहें, बचकर रहें। कोई पैसे देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आप आवेदन भी केवल सरकारी कार्यालयों और अधिकृत माध्यमों से ही करें, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे। इसीलिए किसान भैया, हमारा तो आपसे यही कहना है कि आप अपना ये कीमती समय बिल्कुल ना गंवाएं, जानकारी के यानी कि पूरी जानकारी के साथ साथ इस योजना का लाभ उठाएं और स्वयं को समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ अपनी खेतीबाड़ी को भी आराम से करें और दोनों कामों को मिलाकर यानी कि अपनी खेतीबाड़ी और अपने व्यवसाय को मिलाकर आप और आर्थिक रूप से सशक्त हों, हमारी यही कामना है। लेकिन ये सारी चीजें भी तभी संभव हो पाती हैं जब ईश्वर का स्मरण सदैव रहे, क्योंकि होता क्या है कि हम अच्छा अच्छा तो सब प्राप्त करते हैं, सब अनुभव करते हैं और अच्छे से जी लेते हैं अच्छे को, लेकिन जब बात वहीं थोड़े से दुख की आ जाए या थोड़ा सा संकट आ जाए तो हमें फिर भगवान की याद आती है। लेकिन कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसीलिए हमेशा परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः वही एकमात्र सत्य है, वही हम सबकी मंजिल है और मंजिल को प्राप्त करने के लिए उसका हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, इसी दिशा में आइए बढ़ते हैं और मनोरंजन के लिए साथ ही ईश्वर को याद करते हुए ये सुनते हैं लोकगीत और एक लोकगीत के माध्यम से यात्रा करते हैं अपने वृंदावन धाम की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: किसान साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज की खास भेंट वार्ता का, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर प्रशांत यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत।
2: नमस्कार किसान साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम्य लोक, और आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जो हर किसान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और हमारी मिट्टी की सेहत। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर से डॉक्टर प्रशांत यादव जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं संतुलित उर्वरक प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य की, क्या कहेंगे, भारत चूंकि अब विकासशील से विकसित देश की तरफ बढ़ चला है।
3: जी बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और वर्ष 2050 तक जो अनुमानित हमारी जनसंख्या है वो लगभग 170 करोड़ तक पहुंच सकती है, और इसके लिए जो खाद्यान्न की मांग है वो लगभग 400 मिलियन टन से भी ऊपर जाने की संभावना है। और भारत के पास जो विश्व की कुल लगभग 2.5% भूमि है और जनसंख्या लगभग 18% है, तो ऐसे में मिट्टी की सेहत जो बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फसल हमारी खेतों में ही होती है।
2: बिल्कुल ठीक बात। तो किसान भाइयों के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारी जो खेत की मिट्टी है उसकी सेहत कैसे बरकरार रखी जाए, बेहतर रखी जाए, तो कुछ नमूना लेना है और कैसे संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना है अपनी खेती में, वो जानना बड़ा जरूरी है।
3: तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी मिट्टी की हालत कैसी है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारी अधिकांशतः भूमि में जो जैविक कार्बन की मात्रा है वो लगभग 0.5%, यानी आधे प्रतिशत से भी कम पाई जाती है, और कहीं कहीं यह मात्रा 0.5% से लेकर 0.75% तक भी मिलती है। तो जैविक कार्बन मिट्टी की जान होती है, और यह अगर कम होगा तो उर्वरकों का प्रभाव भी पौधों को उतना नहीं मिल पाएगा और पैदावार कम होगी।
2: यानी केवल उर्वरक डालने से काम नहीं चलने वाला, मिट्टी में जैविक पदार्थ भी होने जरूरी है।
3: जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमारी भूमि में कई प्रकार

0: की समस्याएं भी होती हैं, जैसे कुछ भागों में लवणी मिट्टी का प्रभाव है, कुछ भागों में क्षारीय मिट्टी की समस्या है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज है उनके आसपास मिट्टी में प्रदूषण भी पाया जाता है, और इसके अलावा निम्नलिखित मृदा, इस तरह की समस्याएं भी देश में है, और लगातार रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से या एक ही फसल बार बार लेने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है, और जिससे मिट्टी में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता पौधों के लिए कम हो जाती है। और अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो 1950 के दशक में हमारे देश की मृदा में मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी थी, फिर धीरे धीरे उसमें लोहे की कमी हुई, उसके साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम, और आज लोहा, जिंक और बोरान और सल्फर जैसे कई सारे पोषक तत्वों की कमी पाई जा रही है। तो किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करके ही यह कमी को दूर कर सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, एक ही खेती बार बार लेना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करता है। वो जो हमारी जो फसलें हैं उनमें विविधीकरण बड़ा जरूरी है
0: जी।
1: तो पौधों को कौन कौन से वो पोषक तत्व हैं जिनकी जरूरत पड़ती है, और किसानों को इसकी जानकारी जो है वो चूंकि होनी बड़ी जरूरी है, तो क्या वो पोषक तत्व हैं डॉक्टर साहब जिनकी जरूरत पड़ती है?
0: जी, बहुत अच्छा प्रश्न। पौधों की उचित वृद्धि और अच्छी उपज के लिए कुल 17 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को मृदा और वायु और जल से मिल जाते हैं, और शेष 14 जो तत्व हैं उनको मृदा से पौधों को या उर्वरकों के माध्यम से पौधों को मिलते हैं।
1: जो हम खाद यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं, उनसे वो 14 मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो 14?
0: इन 14 तत्वों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से प्राथमिक पोषक तत्व है वह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। नाइट्रोजन पौधों की जो हरियाली होती है उनमें जो क्लोरोफिल सिंथेसिस की चीज है उसके लिए वो बहुत जरूरी है और पत्तियों के विकास में सहायक होता है, और इसकी पूर्ति यूरिया, गोबर की खाद और जैविक खाद से की जा सकती है। फास्फोरस जड़ों के विकास, फूल एवं बीज बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और डीएपी और सिंगल सुपर फास्फेट इत्यादि इसके स्रोत है। पोटाश पौधों को रोगों और सूखे से लड़ने की ताकत देता है और म्यूरेट ऑफ पोटाश से यह मिलता है। और दूसरी श्रेणी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक यानी सल्फर आते हैं, और इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं। यह कोशिका निर्माण, हरित लवक बनना यानी पौधे की जो आंतरिक संरचना है उसको बढ़िया से करने में इनकी भूमिका होती है, और इनकी पूर्ति जिप्सम और डोलोमाइट से की जाती है। और जो तीसरी श्रेणी के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में पौधों को चाहिए होते हैं लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं पौधों के विकास के लिए, वो है जस्ता, लोहा, मैग्नीज, तांबा, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन और निकल। भले इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है लेकिन इनकी कमी होने से फसल में गंभीर प्रतिकूल प्रभाव होते हैं।
1: तो किसानों की समस्या ये होती है कि उनको ये सूक्ष्म पोषक तत्व खासतौर से जिनकी आपने बात की इनकी कमी है तो पता ही नहीं लगती है, तो मिट्टी की जांच ऐसे में बड़ी जरूरी है।
0: जी, इसीलिए किसान भाइयों को कहा जाता है कि वो मिट्टी की जांच कराकर ही अपने खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करें। इसको बिल्कुल ऐसे समझें जैसे बिना डॉक्टर को दिखाए अगर आप दवा खा रहे हैं तो फिर उसका रिएक्शन हो जाता है, उसी तरीके से मिट्टी की जांच आप नहीं कराते तो आपको नहीं पता कि किस पोषक तत्व की वास्तव में आवश्यकता है, तो इसके लिए मिट्टी की जाँच कराना बहुत जरूरी है।
1: मिट्टी की जाँच आपने कहा कराना बड़ा जरूरी है, लेकिन मिट्टी की जाँच कैसे कराई जाए वो किसान साथियों को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। नमूना का जो तरीका है वो थोड़ा सा किसान साथियों को क्या क्या उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है वो थोड़ा और बता दीजिए।
0: मिट्टी की जांच के लिए किसान भाइयों को पहले तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि मिट्टी की जांच हमेशा दो फसलों के बीच की अवधि में करना है, यानी कि खड़ी फसल के समय भी मिट्टी की जांच नहीं करानी है। तो जब आपका खेत खाली हो तो आपको अपने खेत में से अगर 1 हेक्टेयर खेत है तो उसमें से 15 से 20 जगह आपको मिट्टी की जांच लेनी है, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी की ऊपरी सतह को थोड़ा साफ कर दें, उसमें किसी तरह का गोबर या फसल का अवशेष या किसी खाद का कोई टुकड़ा न रहे, और इसमें आप लगभग 15 सेंटीमीटर का गड्ढा करें और उससे जो मिट्टी निकल रही है वो 15-20 जगह की मिट्टी उनको एक जगह इकट्ठा करके उनका ढेर बनाएं और फिर उसके बीच में क्रॉस या धन का एक निशान लगा दें, फिर आमने सामने के दो पार्ट जो है उनको हटा दें और आधे को आमने सामने को मिला दें, और यह प्रक्रिया बार बार करते रहें। जब लगभग 500 ग्राम यानी आधा किलो मिट्टी का सैंपल बच जाए तब उस नमूने को आप जो है पैकेट में कर लें और उसको अच्छी तरीके से लेबल कर दें ताकि आपको पता रहे कि किस खेत की मिट्टी है। यह एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप इसको किसी लोहा या जिंक या किसी धातु के बर्तन में ना सैंपल रखें बल्कि आप सैंपल प्लास्टिक के उसमें रखें, क्योंकि उससे कई बार उसमें
1: मिट्टी का जो नमूना है उसका जो जांच है उसमें वो तत्वों की जो ये है वो प्रभावित हो सकते हैं।
0: जी जी, तो इसलिए आप प्लास्टिक के उसमें सैंपल रखें, उनको अच्छे से नोट कर दें, कोट कर दें कि आपके किस खेत का है, और फिर अपने पास के जो भी आपके ब्लॉक लेवल पे लैब्स हैं या प्राइवेट लैब्स हैं वहां पे उसकी जांच कराएं और रिपोर्ट आए, फिर जो पोषक तत्वों की कमी है और आप उसके अनुसार जो फसल लगा रहे हैं उसकी जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से फिर आप खाद डालेंगे तो आपको बहुत अच्छी उत्पादन प्राप्त होगा।
1: ये आपने जैसे कहा कि धातु के डिब्बे में न रखें, एक और चीज जो है वो भी समझने की है कि कहीं आपने अगर उर्वरक पहले से दिया है उस जगह से भी नमूना उठाने की जो है आप बचना चाहिए उससे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके साथ ये भी ध्यान देना है जैसे जो पानी के लिए जो नालियां बनाते हैं मेड़ों के किनारे से
1: जी
0: वहां से आपको मिट्टी लेने से बचना चाहिए, जहां पे आप खाद वगैरह मिलाते हैं खेत के जिस कोने पे

0: उस हिस्से से नहीं लेना चाहिए, या कंपोस्ट कहीं कर रहे हैं तो उसके आसपास से आपको लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपको गलत जानकारी दे सकता है। आपको खेत के बीच में उन स्थानों से लेना है जहां पर ये ऐसी कोई चीजों की संभावना न हो, और मिट्टी में किसी तरीके का फसल के अवशेष वगैरह भी न रहे, सिर्फ मिट्टी का ही अंश होना चाहिए।
1: ठीक बात। अब सबसे जरूरी बात पे हम आते हैं, वो है कि बैलेंस जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी हमारी खेती में उर्वरक खाद का जो प्रबंधन है वो संतुलित तरीके से कैसे किया जाए और उसकी जरूरत क्यों है।
0: संतुलित उर्वरक प्रबंधन का अर्थ यह है कि मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जो भी आपके आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा और उनको सही समय पर देना। भारत सरकार के जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके अनुशंसा यह है कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि फसल को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलना चाहिए।
1: लेकिन कई किसान तो केवल यूरिया पे ही डिपेंडेंट होते हैं।
0: हाँ, यह किसान भाइयों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि केवल नाइट्रोजन अधिक मात्रा में डालने से फास्फोरस और जिंक जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो मिट्टी की जांच के हिसाब से और आपकी फसल की कितनी आवश्यकता है, जैसे दलहनी फसलों में आमतौर पर नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है, तो उस हिसाब से अगर आप डालते हैं तो अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बराबर होती है। और अधिक यूरिया डालने से पौधों की बुआर अधिक होती है, यानी कि पौधों की जो दिखने में बहुत आपको हरे
1: बड़े बड़े दिखेंगे
0: बिल्कुल, लेकिन उनकी जो है पैदावार कम हो जाएगी,
1: जो है उत्पाद आपका उतना बेहतर नहीं,
0: आपकी उत्पाद भी घटेगा और अधिक यूरिया देने से कीट और रोगों के होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
0: तो इसका ध्यान रखें। और जो साथ में दूसरे भी हमारे जो द्वितीयक और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनका भी बैलेंस आपको यूज करना है। अगर आपकी मिट्टी में उनका कमी है तो आप उसको फिर जो है डाल के भरपूर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं।
1: अपने एरिया जो है इसमें सरसों खूब होती है, तो यहाँ पे सल्फर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है
0: जी। इसीलिए हमारे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों को यह सलाह हर वर्ष दी जाती है कि वह सरसों की फसल में डाई की बजाय सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें जिसमें सल्फर भी रहता है। तो इससे, चूंकि तिलहनी फसलों में सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण रोग है, और सल्फर का दूसरा फायदा यह होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पौधों में थोड़ी बहुत उपलब्ध कराता है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो खाद और उर्वरक की बात तो आपने कर दी, ये जो हरी खाद है या जैविक खाद है उसके कंसेप्ट और थोड़ा किसान साथियों को समझाएं, क्योंकि यही तो मिट्टी की जान होती है।
0: जी बिल्कुल, मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने और उसकी उर्वरा शक्ति में सुधार करने का जो बहुत अच्छा तरीका है वो जैविक खाद या हरी खाद भी इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है मिट्टी को जीवंत बनाते हैं। अब हरी खाद में देखें तो हरी खाद में ढैंचा एक बहुत अच्छी फसल होती है।
1: पहले बहुत उगाते थे किसान, लेकिन अब धीरे धीरे शायद वो कम हो गया। बिल्कुल
0: हाँ, लेकिन ढैंचा या सनई जैसी जो फसलें हैं जिन्हें खेतों में हम 45 से करीब 1.5 से 2 महीने के लिए इनको अगर उगाते हैं तो इनमें जो है बहुत अच्छा एक तरीके से जो इनकी हरी ग्रोथ होती है। उसके बाद इसमें इसको हम ट्रैक्टर से मिट्टी में मिला देते हैं और उसके बाद जब सड़ता है ये फसल के अवशेष ढैंचा या सनई, तब जो है वो हरी खाद बनाते हैं। तो इससे मिट्टी में जो कई तरह के पोषक तत्व तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, साथ ही मिट्टी में जो कार्बन है जैविक कार्बन है वह भी बढ़ता है। जैसा हमने शुरू में बताया था कि जैविक कार्बन होना भी बहुत आवश्यक होता है। और ढैंचा से लगभग जो है 80 से 100 क्विंटल तक हरा पदार्थ जो पौधों को मिल जाता है, और इससे 30 से 40% नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी हो जाता है। और इससे फूल आने से पहले ही खेत में पलट देना चाहिए, यानी कि जब वो हरी अवस्था में रहे, अपने वेजिटेटिव ग्रोथ में रहे ये फसलें ढैंचा या सनई, तभी उनको मिला के उसके ऊपर पानी लगा देना चाहिए ताकि वो सड़ जाए और अच्छे से मिल जाए और हरी खाद का अच्छे से प्रयोग हो।
1: और जो खेत में बच जाता है फसल का अवशेष है उसको कई किसान लोग जला देते हैं, उसका क्या करना चाहिए?
0: ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो खेत के फसल है उसको जलाने से एक तो पर्यावरण भी जो है दूषित होता है, साथ ही साथ खेत में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसके साथ ही साथ खेत में जो सूक्ष्म जैविक जो हमारे बैक्टीरिया है जो अच्छे सूक्ष्म जीव है वह भी खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो भी अवशेष फसल में बचता है खेत में रहता है उसको खेत में ही मिला देना चाहिए ताकि सड़के वो जैविक कार्बन को बढ़ाए और सूक्ष्म जीवों की संख्या को भी बढ़ाए ताकि अगली फसल को भी अधिक लाभ मिले।
1: तो ये थी किसान साथियों कुछ बातें कि किस तरह से हमें अपनी खेती में मिट्टी की जांच, मिट्टी के पोषक तत्वों का प्रबंधन और अगर जरूरत पड़ती है तो खाद और उर्वरकों का प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान साथियों के साथ हमारे स्टूडियो आकर जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो किसान साथियों, आपने सुनी हमारी ये आज की खास भेंट वार्ता जिसका विषय था प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक प्रबंधन की आवश्यकता, जिसमें आपने सुना डॉक्टर प्रशांत यादव से अनिंद्र सिंह की बातचीत को। और वक्त हो गया है एक और लोकगीत का, पर उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

बारिश के भी आसार लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि पहले भी कहा, 24 घंटों में भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। तो ये थी मौसम संबंधी जानकारी। उम्मीद है आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी रहा होगा। आप जैसे चाहें, जब भी चाहें, हर अपनी अच्छी जानकारी जो भी आपको कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है उसका फायदा लेते हुए आप अपना आगे का काम करें। इसी के साथ मुझे विदा दें, आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।

किसान साथियों, वक्त है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले एक नज़र आज के मौसम पर डालें। तो किसान साथियों, आज का अधिकतम तापमान जहां 29 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन की तरह रात में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के आसार भी बने हुए हैं। इसके अलावा आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ ही कल यानी 8 तारीख के मौसम के हाल की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साथ ही साथ

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हुए हैं, तो आइए अब चलते हैं अपने दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल की ओर।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब हमेशा की तरह अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं आज की खास चर्चा की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक बुराई की, यानी कि भ्रष्टाचार की, जो कि समाज में एक गंभीर बुराई की तरह फैली हुई होती है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी भी होता है। और जैसा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समाज मनुष्यों के द्वारा बना हुआ होता है, जहां प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां होती हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं। उसी तरह समाज में भी अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि कुछ लोगों द्वारा अपने कर्तव्यों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भूलने के कारण समाज में जन्म लेने लगती हैं और फिर धीरे धीरे ये बुराइयाँ समाज को गलत दिशा की ओर प्रवृत्त करने लगती हैं, जिसमें अशिक्षा, भेदभाव, अंधविश्वास, नशाखोरी, हिंसा और अपराध जैसी बुराइयाँ समाज की प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं बनकर सामने आती हैं। और इन्हीं बुराइयों में से एक बुराई है भ्रष्टाचार, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार एक ऐसी गंभीर सामाजिक बुराई है जो कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति को दीमक की तरह खोखला कर सकती है। यह केवल अनैतिक रूप से धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और मानवीय मूल्यों का हनन भी है, जिसमें प्रशासन की पारदर्शिता और नागरिकों की जागरूकता बेहद ज़रूरी है। साथ ही भ्रष्टाचार का जो अर्थ है वो है भ्रष्ट आचरण, यानी कि बिगड़ा हुआ व्यवहार, जिसमें जब कोई व्यक्ति या अधिकारी अपने निजी लाभ के लिए या थोड़े से धन के लालच में अपने पद, प्रतिष्ठा, शक्ति या अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है, जो कि रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, गबन और काला बाजारी जैसे कई रूपों में समाज में फैला हुआ होता है। इसी के साथ जब कोई व्यक्ति अपने काम को जल्दी या बिना किसी रुकावट के करवाने के लिए किसी को रिश्वत देता है तो ये भी भ्रष्टाचार का ही रूप होता है, जिसे जड़ से ख़त्म करना आज बेहद ज़रूरी है। क्योंकि साथियों, भ्रष्टाचार से कई बड़े नुकसान समाज व देश को होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि भ्रष्टाचार ईमानदारी और मेहनत का मूल्य कम कर देता है, जिसके चलते योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति पीछे रह जाते हैं और अनुचित साधन का उपयोग करने वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं। इससे समाज में असमानता और अन्याय बढ़ने लगता है, जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे देश की प्रगति पर पड़ता है। और कई बार तो सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ तक वास्तविक ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे विकास कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और सार्वजनिक संसाधनों का सही उपयोग भी नहीं हो पाता। इसी के साथ यह

समस्या आर्थिक विकास को भी प्रभावित करती है। जब धन का दुरुपयोग होता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल और अन्य आवश्यक सेवाओं के विकास में भी बाधाएं आती हैं, जिसके चलते समाज का कमज़ोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है और तब उनका सामाजिक विश्वास भी कमज़ोर होने लगता है। क्योंकि जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि बिना रिश्वत या अनुचित साधनों के काम होगा ही नहीं, तो फिर ऐसे में लोगों का कानून और व्यवस्था पर विश्वास कम होने लगता है, जो कि किसी भी समाज के लिए यह स्थिति हानिकारक होती है। और अब सवाल आता है कि भाई आखिर कैसे इस भ्रष्टाचार की समस्या को ख़त्म किया जाए। तो साथियों, इसके लिए हम सबको समझना होगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि यदि हम स्वयं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें, गलत कामों का विरोध करें और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें, तो काफ़ी हद तक इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए साथियों, आज हम भी संकल्प लें कि ना तो हम स्वयं भ्रष्टाचार करेंगे और ना ही किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, और ईमानदारी, सत्य, नैतिक मूल्यों के साथ जीवन जीकर एक मजबूत, विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है कि कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है। साथियों, इसे सवाल का जवाब जल्दी से ढूंढिए और तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

0: जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: साथियों, जैसा कि हम जानते हैं और कहा भी जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और उनके ही कंधों पर देश की प्रगति की जिम्मेदारी भी होती है, जो कि सच बात भी है। लेकिन साथियों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर के आसपास, समाज में कई ऐसे बच्चे देखते होंगे जो किसी वजह से शिक्षित न होने पर किसी दुकान पर, किसी फैक्ट्री या मिल आदि में काम करते हैं, जो कि बहुत ही दुखद बात है। साथ ही उन श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा किन्हीं कारणों से न होने की वजह से वे बच्चे गलत संगत तक में पड़ जाते हैं, जिससे उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। साथ ही श्रमिक बच्चों के शिक्षित न होने पर उन्हें बाद में जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए या करने में सरकार किस तरह सहयोगी है, जिसके तहत हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की वार्ता में। वार्ता का नाम है श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जिसके वार्ताकार हैं शशि कुमार उपाध्याय।
3: मजदूर भाइयों बहनों, अगर आप लोगों को काम मिल गया तो ठीक, यदि काम नहीं मिलता तो निराशा हाथ लगती है। आप सोचते होंगे यदि आपने पढ़ाई की होती तो आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ती। साथ ही यह ख्याल भी आता होगा कि यदि आप पढ़े लिखे होते तो किसी अच्छे औहदे पर, यानी कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर आदि होते। लेकिन चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे पढ़ेंगे। मजदूर भाइयों, आज हम आपके बच्चों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, ताकि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो तथा वह समाज व राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनका लाभ उठाकर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है। ना किसी बात की चिंता, ना कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना लिखना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो ये जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो और वह अपनी जीविका के लिए काम करे, बाल मजदूर कहलाता है। गरीबी, लाचारी और माता पिता की प्रताड़ना के चलते ये बच्चे बाल मजदूरी के इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। आज दुनिया में 215 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, और इन बच्चों का समय स्कूल, कॉपी, किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटलों, घरों, ढाबों तथा फैक्ट्रियों में बर्तन, झाड़ू, पोंछा और औजारों के बीच बीतता है। भारत में बाल मजदूर की स्थिति चिंताजनक है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बाल मजदूरों का आंकड़ा 11.3 मिलियन था। सन 2001 में यह आंकड़ा बढ़कर 12.7 मिलियन पहुंच गया। यह एक चिंता का विषय है। यदि बाल मजदूरी रोकने पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश का भविष्य अंधकार में हो सकता है। बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में हर गली नुक्कड़ पर कई राजू, मुन्नी व छोटू आदि मिल जाएंगे, जो हालातों के चलते बाल मजदूरी की गिरफ्त में आ चुके होते हैं। और यह बात सिर्फ बाल मजदूरी तक ही सीमित नहीं है, इसके साथ ही बच्चों को कई घिनौने कृत्यों का भी सामना करना पड़ता है, जिनका बच्चों के मासूम मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश में कई बड़े एनजीओ समाज में फैली इस कुरीति को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इन एनजीओ के अनुसार 50.2% ऐसे बच्चे हैं जो सप्ताह के सातों दिन काम करते हैं तथा 53.22% यौन प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। इनमें से हर दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरह भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 50% बच्चे शारीरिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। बाल मजदूरी की इस स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने सन 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया, जिसके तहत बाल मजदूरी को एक अपराध माना गया तथा रोजगार के पाने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष कर दी गई। इसी के साथ सरकार नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के रूप में बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए कदम बढ़ा चुकी है। इसी प्रोजेक्ट का उद्देश्य बच्चों को इस संकट से बचाना है। जनवरी 2005 में नेशनल चाइल्ड लेबर एक्ट प्रोजेक्ट स्कीम को 21 विभिन्न भारतीय प्रदेशों के 250 जिलों तक बढ़ाया गया। आज सरकार ने 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अधिनियम RTE के तहत कर दिया है। लेकिन जागरूकता के अभाव में सरकार की इस योजना का लाभ बच्चों को मिलता नहीं दिख रहा है। बच्चों के माता पिता सिर्फ इस वजह से उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि उनके स्कूल जाने से परिवार की आमदनी कम हो जाएगी तथा घर का खर्चा कैसे चलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आज 60 मिलियन बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। अगर ये आंकड़े सच हैं, तब सरकार को अपनी आंखें खोलनी होगी। आंकड़ों की यह भयावहता हमारे भविष्य का कलंक बन सकती है। भारत में बाल मजदूरी की इतनी अधिक संख्या होने का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ गरीबी है और जागरूकता की कमी है। यहाँ एक तरफ तो ऐसे बच्चों का समूह है जो बड़े बड़े

0: महंगी होटल में छप्पन भोग का आनंद उठाता है और दूसरी तरफ ऐसे बच्चों का समूह है जो गरीब अनाथ है, जिन्हें भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता और वह दूसरों की झूठन के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। जब यही बच्चे दो वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं, तब इन्हें बाल मजदूर का हवाला देकर कई जगह काम नहीं दिया जाता है। आखिर ये बच्चे क्या करें, कहां जाएं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। सरकार ने बाल मजदूरी के खिलाफ कानून तो बना दिया लेकिन इसे एक अपराध भी घोषित कर दिया। लेकिन क्या सरकार ने गंभीरता से इन बाल मजदूरों की सुध ली है? बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। साथ ही इन बच्चों को दो वक्त का खाना भी उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और सिर्फ सरकार ही नहीं, इसमें आम जनता की सहभागिता जरूरी है। हर एक व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम हो तथा वह इन बच्चों की जिम्मेदारी ले सके तो उसको समाज का परिदृश्य बदल जाएगा तथा बाल मजदूरी में कमी आएगी। मजदूर भाइयों व बहनों, सरकार ने आपके बच्चों के भविष्य के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, जिनमें ऐसे मजदूर जो भवन निर्माण, मार्गों, सड़क, पुल आदि 40 प्रकार के कार्यों में लगे पंजीकृत मजदूरों के 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक प्रदान कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना बिहान बालक बालिका आवासीय विद्यालय निर्माण श्रमिक प्रदेश के 12 जिलों में श्रम विभाग द्वारा एनजीओ के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा से वंचित या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेश हेतु बच्चों की शैक्षिक योग्यता कक्षा 5 पास होना जरूरी है। प्रत्येक जिले में बालक व बालिका बिहान आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों में वार्डन सहित सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी आदि विषय के शिक्षक व योग्य शिक्षा दे रहे हैं, जो बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान कर उनका बौद्धिक विकास कर रहे हैं। इन विद्यालयों में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन समय समय पर कराया जाता है। बिहान बालक बालिका आवासीय विद्यालय का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के मूलभूत अधिकारों से वंचित निर्माण श्रमिकों के शिक्षा से वंचित ड्रॉप आउट बच्चों को पूर्व माध्यमिक की शिक्षा उपलब्ध कराना, घरेलू कार्य एवं छोटे बच्चों की देखभाल में लगे निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालय से जोड़ना, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 8 तक उपलब्ध कराकर मुख्य धारा से जोड़ना, आर्थिक मजबूरी अथवा गरीबी के चलते जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है उन्हें पुनः स्कूल से जोड़ना तथा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। श्रम विभाग द्वारा इन विद्यालयों में श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के बच्चों का प्रवेश कराया जाता है। इन विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, कपड़े आदि दिए जाते हैं। मजदूर भाई व बहन, यदि आप भी अपने बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हैं तो अपना श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर अपने बच्चों को इन विद्यालयों में प्रवेश कराएं ताकि आपके बच्चा शिक्षा पाकर देश की मुख्य धारा में जुड़कर बेहतर नागरिक बन सके। मजदूर भाइयों व बहनों, सरकार की आपके बच्चों के लिए मेधावी छात्र पुरस्कार योजना लागू है। इस योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों ने कक्षा 5 से 7 तक यदि परीक्षा में 55% अंक प्राप्त किए तो बालक को 4000 रुपए तथा बालिका को 4500 रुपए, कक्षा 8 में 55% अंक प्राप्त करने पर बालक को 4500 रुपए और बालिका को 5500 रुपए तथा कक्षा 10 में 50% अंक प्राप्त करने वाले बालक को 5000 रुपए व बालिका को 5500 रुपए तथा ITI में 60% अंक लाने वाले बालक को 8000 रुपए और बालिका को 10000 रुपए तथा कक्षा 12 में 50% अंक लाने वाले बालक को 10000 रुपए तथा बालिका को 12000 रुपए, स्नातक व स्नातकोत्तर में 60% अंक लाने वाले बालक को 12000 रुपए और बालिका को 13000 रुपए व LLB में 60% अंक लाने वाले बालक को 12000 रुपए, बालिका को 13000 रुपए व पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में राष्ट्रीय स्तर अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश लेने पर बालक को 10000 रुपए व बालिका को 12000 रुपए, इंजीनियरिंग की डिग्री में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के उपरांत प्रवेश लेने पर बालक को 20000 रुपए व बालिका को 22000 रुपए, चिकित्सा डिग्री राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के प्रवेश लेने पर बालक को 20000 रुपए व बालिका को 22000 रुपए का हितलाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है। श्रमिक भाई व बहन, मेधावी पुरस्कार योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने जिले के श्रम विभाग में संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि सरकार का प्रयास है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाए तो उस दिशा में सरकार ने प्रयास जारी कर दिए हैं। साथ ही जरूरत इस बात की है कि श्रमिक वर्ग भी जागरूक होकर शिक्षा का महत्व समझते हुए अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा में सम्मिलित करें और देश के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा, जिसके वार्ताकार थे शशि कुमार उपाध्याय। और अब वक्त है एक विराम का, जल्द हाजिर होते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट।

0: करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: साथियों, इस विराम के बाद अब बात कर लेते हैं आपसे पूछे गए प्रश्न की। साथियों, आज के प्रश्न में हमने आपसे पूछा था कि कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है, जिसका जवाब है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हां साथियों, जिनकी आज हम सब जयंती भी मना रहे हैं। साथियों, उनके बारे में आज हम अपने ज्ञान सागर सेगमेंट में विस्तार से बात भी करेंगे। साथियों, 7 जुलाई 1883 में जन्मे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रुचि बचपन से ही अध्ययन भाषा और साहित्य की ओर रही, जिसके चलते वे एक महान कहानीकार, निबंधकार और व्यंग्यकार हुए और उन्होंने अपने ज्ञान और लेखन के माध्यम से ही हिंदी साहित्य को एक नई दिशा भी दी। गुलेरी जी ने बहुत कम लेकिन बेहद उच्च कोटि का साहित्य लिखा। उनकी कहानियाँ सुखमय जीवन, उसने कहा था और बुद्धू का कांटा थी, जिनमें से उसने कहा था कहानी सबसे प्रसिद्ध रही, जो कि आज भी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। साथ ही गुलेरी जी ने यह सिद्ध करके दिखाया कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इसलिए उनके लेखों में निबंधों में भी भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और ज्ञान का सुंदर समन्वय दिखाई देता। गुलेरी जी अपने जीवन में साहित्यकार के साथ एक कुशल शिक्षक भी रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण का संदेश भी दिया। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनना भी है। इसी के साथ उनका जीवन भी हमें यही सिखाता है कि ज्ञान, मेहनत, सादगी और साहित्य के प्रति समर्पण से ही व्यक्ति दुनिया में अमर बन सकता है।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। और जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल मौसम किस तरह से हम सभी को परेशान किए हुए, क्योंकि भाई कभी तो दिन में तेज़ धूप होती है तो फिर कभी सुबह शाम में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जिसके चलते दिन भर गर्मी और उमस इतनी हो जाती है कि सारा दिन हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और यही नहीं, इसके चलते कई सारी शारीरिक समस्या हम सभी को होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, जिसमें त्वचा में खुजली, लाल चकते, जलन और त्वचा का छिलना जैसी परेशानियां पैदा होने लगती हैं। साथ ही इन सभी त्वचा संबंधी समस्याओं से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हम सभी को ध्यान में रखनी होंगी, जिसमें सबसे पहला उपाय है स्वच्छता। ये साथियों, रोज़ स्नान करें और नहाने के बाद शरीर को, विशेषकर त्वचा के सिलवटों और पैरों की उंगलियों के बीच अच्छी तरह से सुखाएं। और अगर बारिश में भीग गए हैं तो तुरंत साबुन से नहाएं और शरीर को पूरी तरह सुखाकर ही सूती कपड़े पहने, जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और पसीना भी नहीं आएगा। क्योंकि भाई बहुत ही चुस्त और लंबे समय तक गीले कपड़े पहनने से ये संक्रमण, त्वचा का संक्रमण बढ़ने का खतरा हो जाता है। इसी के साथ साथियों, घरेलू उपाय में बात करें अगर हल्की फुल्की खुजली में, तो आप उसमें एलोवेरा जेल या नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि त्वचा को मुलायम रखने में सहायक भी होता है और संक्रमण को रोकने का काम भी करता है। लेकिन साथी, यदि समस्या ज़्यादा गंभीर हो या संक्रमण बार बार लौट के आ रहा हो, तो ऐसे में आपको तुरंत त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और उस समस्या का पूरा इलाज कराना चाहिए। और साथियों, अब समय है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको ही मधुर गीत।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदूर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदूर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री इस समय जकार्ता में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अतुलनीय भारत की जीती जागती तस्वीर बताया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम

0: लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले ही पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से ज्यादा गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस साल मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अटलांटा में आज मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi addressed a joint session of the Indonesian Parliament in Jakarta this afternoon. Highlighting the growing partnership between the two nations, Mr. Modi said India and Indonesia have immense opportunities to deepen cooperation across a wide range of sectors. He noted that when India and Indonesia stand together, they reinforce the world's faith that democracy creates opportunities and builds trust. The Prime Minister said history will be made when India's 140 crore people and Indonesia's 29 crore people move forward together in pursuit of shared progress.
2: आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं यह संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी।
1: नाउ वी गो अवर लाइव टू जकार्ता वेयर प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द कम्युनिटी प्रोग्राम।
2: भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
1: Earlier, both leaders also held delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. And the two leaders also witnessed the exchange of memorandum of understanding MOUs aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The two leaders agreed to set up a branch of IIM Bangalore in Jakarta. Prime Minister Narendra Modi was today conferred Indonesia's highest civilian honor, the Bintang Adipurna, by Indonesian President Prabowo Subianto during a ceremonial event. Prime Minister Modi expressed gratitude for the award and dedicated it to the people of India and described it as a reflection of the enduring historical and civilizational ties between India and Indonesia.

0: In Keralam, three people were killed in a landslide at the tunnel construction site near Kaleri in Mepari, Wayanad, following heavy rainfall today. Nine workers who were trapped underground were rescued and shifted to the Government Medical College Hospital, Mepari. Six others remain missing and appear trapped beneath the debris. Rescue operations are continuing with teams from the fire and rescue services and disaster response agencies. Union Home Minister Amit Shah today launched a mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. Mr. Shah said that the central government and the Delhi government have resolved to fully develop 6,300 hectares of green rich area into forest land over the next 4 years and ensure its protection. In men's cricket, India will take on host England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register first win under his captaincy. In the FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. Later in the round 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver. And that is the end of this news bulletin.
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। आप समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कृष्णा गुप्ता से वार्ता। विषय है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनका रचना संसार।
2: 20वीं शताब्दी का प्रारंभिक दशक हिंदी साहित्य में अराजकता, अव्यवस्था और निरंकुशता का काल था। ऐसे समय में संस्कृत हिंदी के विद्वान और अद्भुत शैलीकार पंडित चंद्रधर गुलेरी का उदय हुआ। वे अपनी अमर रचनाओं के माध्यम से नवीन विषय भाव, भाषा शैली और छंदों के साथ प्रकट हुए। खड़ी बोली में सशक्त निबंध लिखकर निबंधों की नई परंपरा को आगे बढ़ाया और सुव्यवस्थित किया। गुलेरी जी ने 19 वर्ष की अल्पायु में ही हिंदी सेवा और नागरी प्रचार का व्रत लिया। सन 1904 में जयपुर से प्रकाशित समालोचक पत्रिका के माध्यम से गुलेरी जी ने अपनी अनूठी भाषा शैली, सरल पदावली एवं भाव गंभीरता को लेकर साहित्य जगत में उतरे। 1915 ईस्वी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था अमर कहानी की रचना करके कहानी साहित्य में भाव, भाषा शैली, व्यंजना और कला की दृष्टि से लेखकों का पथ प्रदर्शन किया। युगीन अव्यवस्था, अराजकता और भाषा की दुर्व्यवस्था पर व्यंग्यपूर्ण शैली में तीखी आलोचनाएं प्रकाशित की। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और प्राचीन शास्त्रों संबंधी तर्कपूर्ण लेख लिखकर प्राचीन भारत के प्रति लोगों को सजग किया। उनके ऐतिहासिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक और पुरातत्व संबंधी विषयों पर लिखे गए निबंधों ने न केवल भारतीय लेखकों को चमत्कृत किया बल्कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन जैसे पुरातत्ववेताओं का भी दिशा निर्देशन किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। महामना मदन मोहन मालवीय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुत्थान किया। अपने जीवंत निबंधों और मुखरित लेखों के माध्यम से जनता की हीन भावना को दूर करके आत्मगौरव का भाव जागृत किया। हिंदी की उन्नति के लिए तन मन और धन से श्रम एवं उद्योग किया। नागरी प्रचारणी सभा का संगठन किया और बाबू श्याम सुंदर दास की स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर सक्रिय सहयोग दिया। गुलेरी जी की प्रसिद्धि अथवा साहित्य से यश कमाने की तनिक भी कामना न थी। यही कारण है कि उन्होंने केवल कोरे प्रचार के लिए नहीं अपितु मातृभाषा प्रेमी के नाते हिंदी भाषा एवं भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपना सारा जीवन अर्पित कर दिया। उनका यह उत्कर्ष महान है। हिंदी भाषा के सक्षम संपूर्ण बनाकर प्रौढ़ रूप देने में गुलेरी जी का योगदान अनूठा है। उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी अनूठी कृतियां दी जो आज भी अपना विशेष महत्व रखती हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई सन 1883 को जयपुर में हुआ। चंद्रधर जी को

0: अपने गांव गुलेरी जी से बहुत अधिक लगाव था, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ गुलेरी लगाया, जो आगे चलकर उनके नाम का पर्याय बन गया। इनके पिता पंडित शिवराम संस्कृत के विद्वान थे तथा घर में संस्कृत में वातावरण था। गुलेरी जी बचपन से ही प्रखर बुद्धि थे। 4-5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संस्कृत बोलने का अच्छा प्रयास अपनी माता के सहयोग से कर लिया था। इनकी स्मरण शक्ति प्रखर थी। 9-10 वर्ष की आयु में गुलेरी जी मातृभाषा की भांति संस्कृत में वार्तालाप आदि करते थे। 10 वर्ष की अवस्था में अपने विद्वानों के सम्मुख संस्कृत में धारा प्रवाह व्याख्यान देकर सभी को चमत्कृत कर दिया। बाल्यकाल से ही गुलेरी जी की प्रतिभा और योग्यता को देखकर होनहार विद्वान के होत चीखने पर वाली कहावत स्मरण हो आती है। साहित्य के क्षेत्र में गुलेरी जी का व्यक्तित्व बड़ा महान था। उन्होंने दूसरे नाम से अनेक लेख लिखे तथा तात्कालीन पत्र पत्रिकाओं का उद्धार किया। हिंदी की प्रारंभिक पत्रिका सरस्वती में गुलेरी जी की पर्याप्त रचनाएं प्रकाशित हुईं। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर गियर्सन ने गुलेरी जी के निबंध शेषुनाग की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी नामक निबंध व लेखों की भूरी भूरी प्रशंसा की। गुलेरी जी के विविध विषयक निबंधों का उल्लेख मेयो कॉलेज अजमेर की पत्रिकाओं में मिलता है। उनके निबंध 3 कोटियों में रखे जा सकते हैं, विवरणात्मक, विचारात्मक तथा भावात्मक। निबंधकार के रूप में गुलेरी जी ने अत्यंत ठोस और सप्रमाण लिखा। निबंधों में रोचक एवं प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हिंदी निबंध साहित्य में इनकी मौलिक देन है। इन्होंने हिंदी में 84 और अंग्रेजी में 5 निबंध लिखे। खुली चिट्ठी, वेदों में पृथ्वी की गति, कछुआ धर्म इनके प्रमुख निबंध हैं। हिंदी के अमर कहानीकारक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी। सुखमय जीवन 1911, बुद्ध का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। इन्हीं 3 कहानियों के बल पर कहानी साहित्य में उन्होंने यश व कीर्ति प्राप्त की और युग को प्रेरित और गतिमान किया। कहानी, उसने कहा था, के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति तथा प्रेम कर्तव्य की भावना व्यक्त की है। उसने कहा था कहानी पर तो 20वीं सदी के 8वें दशक में फिल्म भी बनी। हिंदी साहित्य में पंडित चंद्रधर गुलेरी को प्रमुख रूप में कहानीकार और निबंधकार के रूप में जाना जाता है, परंतु गुलेरी जी ने इसके अतिरिक्त संस्कृत व हिंदी में कविताएं भी लिखी। भारत की जय, स्वागत, रवि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। गुलेरी जी ने पुरातत्व, भाषा, सामान्य विषयों पर अनुसंधान किया। जयपुर वैद्यशाला में जीर्णोद्धार में आपका सहयोग रहा। गुलेरी जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान किया। इन्होंने पत्रिका समालोचक का संपादन 1903 से 1906 तक किया। गुलेरी जी पत्र लेखन कला में भी दक्ष थे। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी व हिंदी में अनेक पत्र लिखे। समालोचना साहित्य के अंतर्गत गुलेरी जी ने पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, शोध, विविध विषयों पर वैज्ञानिक समालोचना की। यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक साहित्य के उत्थान में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का योगदान सभी दृष्टियों से चिरस्मरणीय रहेगा।
1: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विविधा में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कृष्णा गुप्ता से वार्ता। विषय था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और उनका रचना संसार। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

0: सादर कामिल बुल्के के अनुसार
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
5: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
4: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
5: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
4: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण

0: और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
1: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्ट

0: किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
1: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए, वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
3: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, एक रूम लड़कियों के लिए, एक रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आसमान की तरह 5 लाख रूपये के इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेंस यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में

0: मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश।

कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेजबान अली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो केवल पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि धरती को बचाने का संकल्प है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन महोत्सव सप्ताह की, जो हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे देश में मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि धरती पर पेड़ पौधे ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा? ना शुद्ध हवा मिलेगी, ना वर्षा होगी, ना पक्षियों का मधुर संगीत सुनाई देगा और ना ही जीवन की हरियाली दिखाई देगी। इसलिए कहा भी गया है, पेड़ हैं तो कल है, पेड़ हैं तो जीवन है। दोस्तों, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के एम मुंशी द्वारा की गई थी। उनका उद्देश्य था लोगों में वनों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। और तभी से हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में पेड़ों का महत्व अत्यंत बड़ा है। पेड़ हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। वृक्ष मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, भूजल स्तर को बनाए रखते हैं और वर्षा चक्र को संतुलित करते हैं। आपने देखा होगा कि जिन क्षेत्रों में पेड़ कम होते जा रहे हैं वहां गर्मी बढ़ रही है, वर्षा अनियमित हो रही है और जल संकट भी गहराता जा रहा है।

दोस्तों, दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। इन समस्याओं का सबसे सरल और प्रभावी समाधान है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना और उनका संरक्षण करना। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं है, वो लाखों जीव जंतुओं, पक्षियों और कीट पतंगों का घर है। हमारे देश के अनेक आदिवासी समुदायों की आजीविका भी वनों पर निर्भर करती है। लकड़ी, औषधियां, फल, गोंद, शहद और अनेक वन उत्पाद हमें वनों से ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, एक विकसित समाज के लिए केवल सड़कें और इमारतें ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण भी उतना ही आवश्यक है। आज कई शहरों में तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, जिससे प्रदूषण और गर्मी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वन महोत्सव हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

दोस्तों, प्रश्न उठता है कि हम वन महोत्सव कैसे मना सकते हैं। सबसे पहले हम अपने घर, विद्यालय, कार्यालय या खेत के आसपास कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। लेकिन केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी नियमित देखभाल करना भी उतना ही आवश्यक है। हमें पौधों को पानी देना चाहिए, उन्हें पशुओं से बचाना चाहिए और उनके बड़े होने तक उनकी देखरेख करनी चाहिए। विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध लेखन और पर्यावरण जागरूकता रैली आयोजित की जा सकती है। गांव में पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सामूहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक बड़ा पेड़ बनने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे काटने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। इसलिए हमें केवल नए पौधे लगाने पर ही नहीं, बल्कि पुराने वृक्षों को बचाने पर भी ध्यान देना होगा।

0: दोस्तों, हमारे भारतीय संस्कृति में भी पेड़ों को विशेष महत्व दिया गया है। पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और आंवला जैसे पौधों को पूजनीय माना गया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश सदियों पहले ही दे दिया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम वन महोत्सव को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न समझें, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाएं। यदि देश का प्रत्येक नागरिक हर वर्ष एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे, तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ पर्यावरण मिल सकता है। आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सभी एक संकल्प लें। मैं एक पौधा अवश्य लगाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि एक पेड़ 100 उपकार देता, छाया फल अपार, धरती का ये सच्चा गहना, पेड़ों से ही जीवन रहना। इन्हीं प्रेरणादायक शब्दों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं इस मधुर गीत के साथ, मगर हां, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि गीत के बाद बातें अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत

आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हमारा देशभक्ति पर फिल्म संगीत पर आधारित खास कार्यक्रम भारत भारती।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी

दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत भारती और मैं हूं आपका दोस्त अली। आज हम बात करेंगे भारत के उस नेता की जिन्हें राजनीति में सिद्धांत, सादगी और बेबाकी का पर्याय माना जाता है। कल यानी 8 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर केवल एक राजनेता नहीं थे बल्कि ऐसे जननेता थे जिन्होंने सत्ता से अधिक समाज और देश के हित को महत्व दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि राजनीति केवल पद प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि जनता की सेवा का सबसे बड़ा दायित्व है।

दोस्तो, चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ था। छात्र जीवन से ही वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया और देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो बिना किसी डर के अपनी बात रखते थे। संसद हो या जनता के बीच का मंच, वो हमेशा स्पष्ट और निर्भीक होकर बोलते थे। यही कारण था कि उन्हें अक्सर यंग टर्क कहा जाता था। वो सत्ता में रहते हुए भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का साहस भी रखते थे।

दोस्तों चंद्रशेखर का राजनीतिक जीवन कई उतार चढ़ावों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वर्ष 1990 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने, हालांकि उनका कार्यकाल लगभग 7 महीने का ही रहा, लेकिन उस कठिन दौर में उन्होंने देश को स्थिर रखने का प्रयास किया। आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और कई चुनौतियों के बीच उन्होंने धैर्य और विवेक के साथ नेतृत्व किया। उनके जीवन की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में से एक थी उनकी ऐतिहासिक भारत यात्रा। वर्ष 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि देश की वास्तविक समस्याओं को समझना था। वो गांव-गांव गए, किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं से मिले। उन्होंने जाना कि भारत की असली तस्वीर राजधानी की इमारतों में नहीं, बल्कि गांव की गलियों में दिखाई देती है।

दोस्तों, आज जब राजनीति में प्रचार और सोशल मीडिया का दौर है, तब चंद्रशेखर की यह पदयात्रा हमें याद दिलाती है कि जनता से सीधा संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। चंद्रशेखर अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। वो मानते थे कि नेता का असली परिचय उसके विचार और उसके कर्म होते हैं, ना कि उसका पद या वैभव। यही कारण है कि राजनीतिक विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। वो एक अच्छे लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक चुनौतियों पर गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया। उनकी भाषा सरल होती थी, लेकिन विचार बेहद गहरे होते थे। वो हमेशा युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते थे।

दोस्तों, आज जब हम चंद्रशेखर के जीवन को देखते हैं तो महसूस होता है कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता, ईमानदारी और जनसेवा से जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कभी लोकप्रियता के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष और उनकी सादगी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पुण्यतिथि केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का भी दिन है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, ईमानदारी और जनसेवा की भावना को आगे बढ़ाएंगे। आज के समय में जब राजनीति को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं, तब चंद्रशेखर का जीवन हमें विश्वास दिलाता है कि सिद्धांतों के साथ भी राजनीति की जा सकती है। उन्होंने साबित किया कि नेतृत्व का अर्थ केवल शासन करना नहीं होता, बल्कि समाज को दिशा देना भी होता है। आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम सभी ये प्रण लें कि अपने अपने क्षेत्र में

ईमानदारी, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी संदेश के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी स्मृतियां और उनके आदर्श सदैव हमारे मार्गदर्शक बने रहें।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम भारत भारती। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

ए आर रहमान के संगीत से सजे इस फिल्मी गीत को हमने लिया था फिल्म रॉक स्टार से। आवाज थी मोहित चौहान की। अगला गीत फिल्म कॉकटेल से है, संगीत प्रीतम का है, रचना इरशाद कामिल की है और आवाजें हैं मोहन कनन और शिल्पा राव की।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म यारियां से, रचना अर्को की है और संगीत और आवाज है शफकत अमानत अली की। आइए सुनते हैं ये मधुर गीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र पर।

अभी आप आनंद ले रहे थे चित्रपट संगीत का। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:45 होने को है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत

0: की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है, ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आईआईएम वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकीकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने ये भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांगी रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी

0: है और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीक शुदा है और इससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जुनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत कलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमन इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार, बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की, अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा, बहरी सलामती, तिजारत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकेकार के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म, प्रोफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत 1 अरब से ज्यादा ख्वाबों को परवान चढ़ाने वाला मुल्क है।
2: आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
0: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपुर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
2: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए

0: अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क रास्ते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इक्तसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत, खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मंसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया जिससे देही इलाकों में रोजगार पैदा करने में तेजी लाने में मदद मिलेगी। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी के तहत अब तक राजस्थान को 445 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जिनमें से तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो

गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मेपाजी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निपटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए

0: man kann.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं।

0: पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम मंथन। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। डॉक्टर अरोड़ा, आपका आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद श्रेया जी आमंत्रित करने के लिए।
1: धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि हमारे श्रोताओं को आप ये सरल शब्दों में बताइए कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई।
2: तो ये डिजिटल मिशन के बारे में बात करने से पहले मैं अपने श्रोताओं से एक सवाल भी पूछना चाहता हूं और उसका जवाब भी मैं ही दूंगा। और वो सवाल ये है कि कोविड के दौरान जब कोविड का टीकाकरण हो रहा था तब हम सबको याद है कि किस तरीके से कोविन पर हम लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जा रहा था, और साथ ही साथ जब पहला टीका लगता था तो उसका सर्टिफिकेट आ जाता था, दूसरा हो तो फिर सर्टिफिकेट दूसरे के लिए हमें याददाश्त हमें याद कराया जाता था, और दोनों टीके लगने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिल जाता था कि हम पूर्णतः अब सुरक्षित हैं कोविड से। तो इस प्रकार ये कमाल और ये जो हमारा अनुभव रहा है उसका कारण डिजिटलाइजेशन था, और इसी डिजिटलाइजेशन को अब एबीडेम या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी कदम है सरकार की तरफ से, जिससे हमें स्वास्थ्य सेवाएं सुविधापूर्वक मिल सकें, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, और इसमें दो चीजें और हैं। तो एक तो सुविधा बढ़ जाए, लेकिन साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो कुछ हो रहा है वो साफ ढंग से पता चलता रहे, ये इस एबीडेम का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जैसा कि श्रेया जी ने हमको बताया कि चाहे वो हम आयुष्मान भारत कार्ड की बात करते हैं, हम इंश्योरेंस की बात करते हैं सब जगह, और अभी आभा आईडी है, आभा आईडी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, ये किस तरीके से हमारी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करता है, और जीवन के हर पहलू में ही नहीं लेकिन मेरे पूरे परिवार की स्वास्थ्य की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा बिना किसी परेशानी के।
1: तो डॉक्टर अरोड़ा, जैसे अभी आपने आभा हेल्थ आईडी की बात की, तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि इस मिशन का सबसे प्रमुख आधार अगर हम देखें तो आभा हेल्थ आईडी ही है, तो आम नागरिक के लिए यह कितनी उपयोगी है और इससे इलाज की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह आसानी लाई जा सकती है।
2: आभा आईडी का मतलब ये है कि जब भी हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, बड़े अस्पताल में जाते हैं, तो हमें एक ओपीडी कार्ड मिलता है या हमें वहां का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और हर जगह जैसे नई जगह जाते हैं तो हमें नया कार्ड मिलता है। आभा आईडी का मतलब ये है कि मेरे पास जो आभा आईडी है, मैं किसी भी अस्पताल में जाऊंगा, किसी भी स्वास्थ्य फैसिलिटी में जाऊंगा, तो मेरे को हर बार वही आभा आईडी मेरा रहेगा। इसके साथ साथ एक और भी फायदा ये है, जो सबसे बड़ा फायदा है, कि जो मेरे को अभी तक इलाज दिया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट फैसिलिटीज में, वो भी उसके अंदर एंटर्ड रहेगा। तो मेरे का एक तरीके से एक व्यक्ति का जो स्वास्थ्य संबंधी पूरा इतिहास है वो इकट्ठा एक जगह मिल जाता, मेरे को अपने साथ कागज ले जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, उसके लिए परेशानी नहीं होगी। हम लोगों से कागज गुम हो जाते हैं, इसी तरीके से जो जांचें कराई होती हैं वो कभी समय पे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, पता नहीं चलता कि कब कराई गई थी। लेकिन आभा आईडी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सारा मेरा जो स्वास्थ्य संबंधी इतिहास है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता रहता है, और दूसरा ये है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि मैंने आज दिल्ली में दिखाया और उसके बाद भोपाल जाना पड़ा और वहां पर अपना जांच करा रहा हूं, तो वो मेरा आभा आईडी एक तरीके से मेरे साथ साथ चलता है, और वहां पर आभा आईडी को देख करके वहां के डॉक्टर चिकित्सक जो स्वास्थ्यकर्मी है वो मेरा पूरा स्वास्थ्य का इतिहास देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के, क्योंकि हर एक व्यक्ति का किसी भी बीमारी का होना और उसका उसका जो दवाई दी जाती है, इलाज कराया, उसका प्रभाव पुराने स्वास्थ्य इतिहास पे भी निर्भर करता है, तो इस तरीके से मेरे साथ मेरा स्वास्थ्य का इतिहास, साथ में जो इलाज किया गया, जो जांच की गई थी, वो मेरे साथ साथ चलती हैं आभा आईडी के रूप में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, तो अभी आप

0: ने जैसे बताया कि आभा हेल्थ आईडी से हम किस तरह से ये जो डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा है ये काफी आसान हुई है, आप इसे भारत की डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में कितना महत्वपूर्ण पड़ाव समझते हैं?
1: ये तो आमूल परिवर्तन रहेगा। जिस तरीके से शुरू में जब आधार का नंबर दिया जा रहा था, आधार नंबर किया जा रहा था, लोगों के मन में संशय था, लोगों को पता नहीं चलता था। इसी तरीके से आभा आईडी जो है, हमारा हेल्थ आईडी जो है, ये एक आमूल परिवर्तन है कि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड हमारे साथ साथ रहेगा हमेशा के लिए, और मेरे को बहुत ज्यादा अपने ध्यान नहीं रखने की जरूरत है। आप लोगों ने डिजी लॉकर के बारे में सुना है जिसमें हम अपने जरूरी कागजात संभाल के रखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये उसी तरीके से जो हमारे स्वास्थ्य के जरूरी कागज हैं वो सारे मेरा एक तरीके से मेरे लिए लॉकर बन जाता है डिजिटल स्पेस में। मेरे को याद रहे ना रहे, डॉक्टर दूसरे के पास जब जाएंगे तो वो उसको देख सकता है कि पहले क्या हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें आपकी प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहती है। प्राइवेसी का मतलब यह है कि आपके अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर डॉक्टर भी देखना चाहता है आपके पुराने रिकॉर्ड को तो ओटीपी आपका, आपसे डॉक्टर कहेगा कि वो आपका रिकॉर्ड खोलना चाहेगा, आप अब आईडी बताएंगे, आपका ओटीपी आएगा आपके टेलीफोन पे मोबाइल पे, और तभी वो उनको देख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये प्राइवेसी वाला जो कंपोनेंट है ये भी उतना ही इसके साथ बना रहता है। और ये, और कुल मिलाकर ये मैं जो हम चाहते हैं कि जो मेरी बीमारी है, मेरी जो स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति है उसमें गोपनीयता बनी रहे, तो वो गोपनीयता भी बनी रहती है और वो किसी को जरूर कि दूसरे को पता चले ऐसा नहीं होता। इवन डॉक्टर भी अगर देखना चाहेगा तो वो आपके परमिशन के बिना उस रिकॉर्ड को नहीं देख सकता।
0: तो डॉक्टर अरोरा, जैसे कि अभी आपने गोपनीयता की बात की तो उसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न ये होगा कि जैसे हम डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और एआई के बढ़ते उपयोग के साथ लोगों के मन में जो डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर काफी सवाल रहते हैं जिसकी अभी आपने चर्चा भी की, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये इन चिंताओं का समाधान किस प्रकार करता है?
1: तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि आभा आईडी के थ्रू आपका रिकॉर्ड आपका डॉक्टर भी नहीं देख सकता, वो केवल आपका रिकॉर्ड है। और इसी तरीके से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि ये रिकॉर्ड किसी भी तरीके से कोई और ना देख सके, तो गोपनीयता के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से आधार के बारे में है तो आधार की भी गोपनीयता बनी हुई है, उसी तरीके से आभा आईडी की गोपनीयता भी पूर्ण तरह सुरक्षित की गई है। और उसमें कई लेयर्स हैं सुरक्षा के कारण, जिसको फायरबॉल्स कहते हैं कि उसको कोई देख ना सके। और कुल मिलाकर के ये जो मन में एक चिंता है एक आम व्यक्ति के मन में, तो मैं उसका पूर्णतः उसको कहूंगा कि निराकरण करें उस चिंता से कि ये पूर्णतः गोपनीय है, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो किसी को भी नहीं पता चल सकती अनलेस अगर आप खुद नहीं बताना चाहें तो।
0: जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न होगा कि ये जो नई आरोग्य सेतु 2.0 ऐप है जिसमें हम स्वास्थ्य रिकॉर्ड हो या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बीमा जानकारी या फिर जो एआई आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसी कई सुविधाएं जो इसमें जोड़ी गई हैं, तो आपको क्या लगता है कि यह जो प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बने जहां नागरिकों को लगभग सभी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं एक ही जगह पे मिल सकती हैं? तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप सरल शब्दों में बता सकें।
1: आरोग्य सेतु, फिर मैं आपको कोविड के दौरान ले जाऊंगा। आरोग्य सेतु 1.0 जो था वो कोविड के साथ बना था
0: जी,
1: और उसमें ये था कि अगर आपको कोविड के इलाज से संबंधित कुछ सूचना चाहिए, आपको अपने आसपास कितने मरीज हैं उनके बारे में पता करना है, आपके निकटतम स्वास्थ्य केंद्र कौन सा है जहां पर आपको इलाज मिल सकता है या जहां पर जांच की जा सकती है, वो उसमें था। तो आरोग्य सेतु 2.0 जो है वो उसका आगे विकास किया गया है कि अब मेरे को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, सबसे नजदीकी कौन सी स्वास्थ्य सेवा है जहां पर मैं जा सकता हूं। एक उदाहरण के लिए, रात को मध्य रात्रि में कोई महिला प्रसव में जाती है, उसको डिलीवरी मतलब पेन्स शुरू हो जाते हैं और उसको अब किस अस्पताल में ले जाऊं, तो ये आरोग्य सेतु से मेरे को पता चल सकेगा कि कहाँ कहाँ डिलीवरी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। इसी तरीके से किसी को दिल संबंधी परेशानी है या जिगर संबंधी

0: परेशानी है और वो चाहता है कि उसके सबसे नजदीक और विभिन्न प्रकार के जो ऑप्शंस हैं बीमारी को देखने के लिए वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो करा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ आएगा कि ये हम सब लोगों को जरूरत होती है इन सारी जरूरतों का, और खास तौर पर इमरजेंसी के दौरान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मेरे को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने आरोग्य सेतु खोल करके और जो मेरी स्वास्थ्य समस्या है वो उसमें डाली और कहा कि भाई मेरे को कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपको एक गाइडेंस दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो एक जीवन में उसको और बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि समय के साथ जैसे कि हमारे शहर बड़े हो रहे हैं और हर एक व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता, अभी खाली वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे से सुन करके हम चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन आरोग्य सेतु जो है 2.0, ये यानी कि वास्तविकता धरातल पे क्या सिचुएशन है उसके आधार पर हमें गाइडेंस दे सकता है।
1: जी, और जैसा कि अभी हम देखते हैं कि स्कैन एंड शेयर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी सुविधा है जिसके कारण अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का इंतजार कुछ मिनटों तक सीमित हो गया है। क्या आपको लगता है कि ऐसी डिजिटल व्यवस्था मरीजों और अस्पताल दोनों के अनुभव को बेहतर बनाएगी?
0: हाँ, ये अब जो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि सरकारी अस्पताल सरकारी दफ्तरों के हिसाब से चलते हैं और उसकी वजह से मरीज को, परिवार को काफी असुविधा झेलनी पड़ती है, जबकि बीमारी ना अपॉइंटमेंट लेकर के आती है और जब हमें जरूरत होती है तब हमें चिकित्सा और चिकित्सा कर्मी की जरूरत होती है। तो डिजिटलाइजेशन से और एक टेलीमेडिसिन के बेसिस पर हमें जिस समय 24 घंटे में जिस समय जो सुविधाओं की जरूरत है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, और खास तौर पे ये देखा गया है कि जो चिकित्सा संस्थान है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वहां पर टेलीमेडिसिन की सर्विसेज अब काफी लंबे समय तक उपलब्ध होती हैं, जिससे कि हम उनसे बिना वहां पर व्यक्तिगत तौर पे जाए हुए हमें कंसल्टेशन मिल सकती है। इसके अलावा एक और भी फायदा है और वो ये है कि मैं किसी बड़े अस्पताल में, मेरा कोई इलाज चल रहा है, मेरी सर्जरी हुई है, अब उसको डॉक्टर के पास 2 महीने बाद या 1 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा दिखाना है, और डॉक्टर के पास मैं जाता हूं और वो 5 मिनट मेरे से पूछता है और वो कहता है अब मैंने मतलब 2 दिन खर्च करके गया हूं अस्पताल में। तो इस तरह से फॉलोअप के लिए भी जो टेलीमेडिसिन है या ये डिजिटलाइजेशन का सारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत हेल्पफुल है, मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। एक
1: जी
0: और चीज भी करी जा रही है कि अगर जरूरत पड़े तो जो मेरा स्थानीय डॉक्टर है उसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई आप चले जाइए इनके पास, ये आपकी देखभाल उतनी अच्छी करेंगे जितने एक बड़े संस्थान में किया गया था। तो कुल मिलाकर ये डिजिटल इकोसिस्टम मेरे जीवन में एक उसको बेहतरी ला रहा है, उसमें सुविधाजनक बना रहा है और मेरी जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उसको कम करने का प्रयास है।
1: जी तो जैसा डॉक्टर एनके अरोड़ा ने हमें बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलू हैं, और इस चर्चा से यह स्पष्ट है कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधाएं बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का प्रभावी साधन भी है। इसी संदेश के साथ ये कार्यक्रम मंथन के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर एनके अरोड़ा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न पहलुओं पर बेहद सरल और महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रेया जी, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से नागरिकों की सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, और उसकी सबसे पहले सुनते हैं ये प्रस्तुति।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लखनऊ से, कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित 4 दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोड़ा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना से। आकाशवाणी अयोध्या एफएम की ओर से सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद सर।
1: और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या में इस समय कौन कौन सी खेल गतिविधियाँ हैं जो चल रही हैं।
2: अयोध्या में बताना चाह रहा था कि पूरे यूपी का सबसे बड़ा एक स्टेडियम है, जो कि लगभग 45 एकड़ में ये बना हुआ है और इसमें अलग अलग खेलों की बहुत सारी गतिविधियां यहाँ पर चलती रहती हैं, जिसमें हमारे यहाँ कोचिंग जो चल रही है वो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, हैंडबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पर।
1: अभी हाल ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
2: अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को
1: जी।
2: पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए उस प्रतियोगिता का बहुत
1: ट्रायल हुआ था उसका।
2: प्रतियोगिता कम ट्रायल था
1: जी जी,
2: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते हैं, तो कोई भी जना उसको कर सकते।
1: तो जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने के लिए?
2: नेशनल जाएंगे,
1: राष्ट्रीय
2: यूपी की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे
1: बैडमिंटन में।
2: बैडमिंटन

0: इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता
1: जी।
0: है।
1: और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने खेल को निखार कर प्रोग्रेस करके उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
0: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया ये सारे तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं।
1: जी
0: साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर सात जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है, और वो भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है। पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना, सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये सात गेम हैं।
1: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
0: सात गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं है रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है, तो उसमें वो लोग कर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है। पहले जिला स्तर पर अपने सिलेक्शन होगा,
1: अच्छा
0: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उनको 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं।
1: जी।
0: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी, 2, 5, 7, वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज़ फ्री।
1: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
0: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है। लगभग इसमें हर एक में 20 20 20 20 बच्चे रहते हैं, लड़कियां जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं।
1: जी, छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
0: देखिए, लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है
1: वार्षिक?
0: वार्षिक, वो करके कोई भी जना कर सकता है, 18 साल से कम वर्ष का। और
1: जी
0: अगर 18 साल से ऊपर है, वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे, तो उसमें 200 रुपये महीना उसको देकर
1: जी
0: यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
1: जो
0: अपना।
1: स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
0: नहीं, वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है, तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
1: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी हाल ही में कौन सी टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
0: नेशनल में अभी जूडो में भी गए
1: अच्छा
0: हैं, हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की। वॉलीबॉल से भी 2-3 लड़कियां इस बार सेलेक्ट हुई थी।
1: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
0: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था। जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है, लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा
1: जी
0: लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी है।
1: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों को।
0: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना
1: जी
0: आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती,
1: जी जी
0: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करने।
1: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
0: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से। एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है, जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया, एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट कराए गए, उनको किट और वो सब दी जाती है,
1: अच्छा
0: किट है, जूते है, ब्रोजेस, चीज उनको देके, और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते हैं।
1: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है,
1: जी
0: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा, तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है। और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं, तो वो भी उस चीज के अलग से, उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई, लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं। तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए, हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है।
1: जी
0: एथलेटिक्स के लिए पतला, तो गोला फेंकने के लिए तगड़ा,
1: जी हाँ,
0: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड
1: हाइट
0: ज्यादा है,
1: वगैरह भी देखी जाती
0: हाइट
1: होगी।
0: है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है,
1: जी
0: आपका शरीर होना चाहिए, पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए, बहुत सारे
1: सबसे
0: चीजें
1: बड़ी ये
0: हैं।
1: चीज है कि
0: हाँ,
1: जुनून होना
0: जुनून
1: चाहिए,
0: होना चाहिए उसके
1: अगर
0: अंदर,
1: जोश नहीं है तो
0: तो
1: फिर
0: फिर
1: गेम
0: कुछ
1: खेल
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: पाएगा
0: और फिर
1: वो।
0: उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें होंगी, वो
1: जी
0: धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
1: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं,
0: जी।
1: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
0: देखिए, कबड्डी में भी है, यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला

0: है, वो कोच है। ऐसे ही हमारे कुश्ती भी चलती है,
1: जी
0: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से। तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है, लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने 2 गेम तो पकड़ रखे हैं।
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप
0: जी
1: उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं।
0: जी
1: स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खासतौर के अयोध्या में,
1: जी
0: क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम
1: जी
0: हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं।
1: जी
0: बस यही है कि माँ बाप जो भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो
1: तो
0: ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ
1: जी
0: पर आके खेलें।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम है जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कबड्डी है, क्रिकेट है, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा, इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी
0: इतना बड़ा है, जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रो टर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो
1: जी
0: मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रो टर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है,
1: जी
0: सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्विमिंग पूल है,
1: अच्छा
0: लर्निंग भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है।
1: अभी जहां मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी
0: जी
1: प्लेयर्स से,
0: जी
1: तो वहां देखा था मैंने एस्ट्रो टर्फ भी
0: ऐसे
1: लगी
0: भी
1: हुई है,
0: हाँ
1: सारी
0: वही
1: सुविधाएं
0: जी,
1: हैं।
0: वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज ही अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चल रहा है, जैसे एथलेटिक्स है
1: जी
0: सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है,
1: जी जी
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसको ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत AJ अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबा सेमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहाँ पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहाँ पर?
2: मैं 1 साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहाँ गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल लेता
1: क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
1: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने, उन्हीं के साथ आए।
1: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
1: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि जीत जाएंगे हम?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
1: अच्छा।
3: हाँ, ये बढ़िया टेक्निक है।
1: तो कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
3: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर का कोई वही नहीं रहता, बिना डरे खेलो।
1: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
1: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास करना
3: सर? न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे, 3 घंटे शाम तक।
1: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
3: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना सर, इसको उठा ले खा सकते हैं जब खेलना है तो, इतना तो
1: जी, जी।
3: सुबह डाइट रहता है।
1: और सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती है।
3: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है
1: ना, और मेंटली भी हम अच्छे,
3: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
1: जी जी। आपका क्या नाम है?
4: सौरभ कुमार।
1: आप कब से आ रहे हैं?
4: 2 साल हो गए।
1: 2 साल आपको हो गया?
4: यस।
1: और कहाँ के रहने वाले हैं?
4: अयोध्या जिला।
1: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे, तो वहाँ से भी और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे, तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
4: ये सीखा सर और मेहनत करे और अच्छा खेले। हम लोग हार गए थे वहाँ जाके 1 पॉइंट से फाइनल।
1: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है।
4: यस।
1: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पे काम करते हैं, है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
5: सत्यम पाल।
1: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी?
5: जी।
1: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
5: सर ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
1: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
5: हम लखनऊ के हैं।
1: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं?
5: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में।
1: अच्छा, तो वहाँ पर जो

0: टीमें और आई होंगी, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
1: उनसे मिलकर अच्छा लगा और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रेटजीज खेलते हैं
0: अच्छा,
1: वैसे
0: ब्रीथिंग
1: करते
0: के
1: हैं।
0: लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
1: हाँ होता
0: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
1: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
2: कोमल यादव,
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
2: हॉस्टल से।
0: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
2: नहीं, बनारस।
0: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो आप सीख रही हैं?
2: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
0: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
2: 200, 400।
0: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
2: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
0: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
3: तेजस्वी निषाद।
0: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
3: 3 साल होने हैं।
0: लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
3: नहीं, प्रयागराज।
0: प्रयागराज से यहाँ हॉस्टल में रह के
3: आपकी
0: रह रही
3: साल चयन हुआ है।
0: तो आप कहाँ कहाँ अब तक खेलने गई हैं?
3: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ था।
0: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी,
3: हाँ।
0: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
3: यही उन लोग पासिंग से खेल रहे थे,
0: जी,
3: अच्छा मिला मिला।
0: क्योंकि जब तक हम कहीं
3: नहीं
0: बाहर
3: मिला,
0: नहीं निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
3: नहीं।
0: है ना? तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या था हॉकी में?
3: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
0: जी, जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
3: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था
0: जी,
3: इसलिए।
0: तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती हैं?
3: सविता पुनिया।
0: आपका क्या शुभ नाम?
4: सर शिवम।
0: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
4: सर यहीं बगल से 2-3 किलोमीटर है।
0: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए
4: जी
0: हैं?
4: सर।
0: कहाँ गए हैं?
4: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में
0: अच्छा
4: 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
0: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे
4: जी सर।
0: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते हैं
4: जी सर।
0: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीजें मिलती हैं?
4: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
0: आपका शुभ नाम?
5: चंचल मौर्या।
0: चंचल मौर्या, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
5: जी मैं मलिकपुर गाँव से आती हूँ और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ। तो
0: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
5: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है गांव से ही है,
0: तो
5: मैंने तो हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो उसको देख के।
0: आप कब से खेल रही हैं?
5: मुझे 4 साल हो गए हैं।
0: 4 साल हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी?
5: जी नेशनल खेला है।
0: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
5: आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुआ था चैंपियनशिप 2025 में।
0: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
5: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ पे
0: मेन चीज ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है वहाँ पर।
5: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो सारी चीज सीखने को मिली मुझे।
0: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
5: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
0: तो आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
5: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अविश।
0: आपका शुभ नाम?
6: सब नीलाक्षी।
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने?
6: सर हम ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस, सर यहाँ से आते हैं।
0: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको स्टेडियम मिल गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
6: सर हमें बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में
0: जी। इसके अलावा जब कभी आप खाली होती हैं तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं उनको अभी आप देखती होंगी?
6: सर फोन पे।
0: तो आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
6: सविता पूनिया।
0: चलिए आकाशवाणी अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी। और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर

बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच ही जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही T20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने T20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये चौथी भिड़ंत थी। इसके पहले तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और चौथी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ 3री गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के 3रे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा। अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीत कर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिश्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब

प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ता जाएगा।

0: कांस्य पदक अर्जित किए। खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा। इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया। जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: दर्पण। अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में कलाकार पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मियां की मल्हार।

अभी ही आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित भीमसेन जोशी से ख्याल गायन। आपने प्रस्तुत किया राग मियां की मल्हार। मीडियम वेव 106.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 11 बजने को है, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के

0: बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंटांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news set by Aparajita Nair. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr. Modi said, India follows the path of development, not expansionism.
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: The Prime Minister said the relationship between India and Indonesia is centuries old and shares similar democratic values, mutual trust and a common